0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti. Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग. 8:08 हो चुके हैं. कैसे हैं मेरे दोस्तों? वाह क्या ठंडी ठंडी सुबह है. चाय तैयार कीजिए, कॉफ़ी बनाइए और अगर हो सके तो 2 मिनट इस फ्रेश हवा को महसूस कीजिए. बाहर बहुत प्यारी सी बारिश हल्की हल्की सी हो रही है. ठंडा मौसम हो चुका है तो ये सच में आपके चेहरे को तो सुंदर बनाएगा, बट आपके जो चेहरे पर जो फ्रेश मॉर्निंग की मुस्कुराहट आएगी उसको और भी फ्रेश कर देगा. तो बाकी आपकी सुबह के लिए हम खुशनुमा प्यारे प्यारे से गाने लेकर आ चुके हैं. मैं हूँ आपके साथ पूनम. इंजॉय करते हैं, शुरू करते हैं राइज एंड शाइन.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:19 हो चुके हैं. गई ना नींद. मुझे पता था आपको नींद कहाँ हम आने देंगे, क्योंकि घर के भी काम शुरू हो गए हैं, ऑफिस जाना है. तो और जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो भाई मॉर्निंग जल्दी उठना होता है. और हमारे वो दोस्त जो ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम, बस चला रहे हैं, वैन चला रहे हैं, या कहीं पर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर उनको अपने कस्टमर्स को लेना है या अपने क्लाइंट्स को लेना है, उनको डील करना है, तो हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे, आराम से ड्राइव करें, इंजॉय करें अपने पुराने गाने. अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो हमें भेज 5499-1294 पर. इंजॉय कीजिए अपने पुराने गाने.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:30 हो चुके हैं. हम सबको विश करते हैं कि भाई आपका दिन बहुत अच्छा जाए, और हम आपको ये भी विश करते हैं कि आपकी जो पूरे दिन की जो एनर्जी है ना, वो आप समेट के रहें. ये नहीं कि भाई कहीं पर भी स्ट्रेस आए और निकाल दें. नहीं नहीं नहीं, अगर कोई टेंशन आए, कोई परेशानी आए, उसे बोलो भाई थोड़ी देर बाद आना, कुछ दिन बाद आना, और उसको टालते जाना. तो चलिए भाई दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं हम आपके, बहुत क्योंकि हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं और सबकी बस ख्वाहिश होती है कि उनका एक तो नाम पढ़ा जाए. और सब मुझे विश कर रहे होते हैं या किसी भी आरजे को विश कर रहे होते हैं, हमारे दिल से आप सबके लिए भी वही विशेष होती हैं जो आप हमें यहां पर भेजते हैं. तो सुरेश शर्मा साजदा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को. थैंक यू सो मच आपका जयशन जी, टिम्बा जेबुन, ओमरियान लंगोटिया, ए के आश, श्रवण रामदेवर एंड मेविन रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं गानों को, और साथ में कह रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग और सबका दिन बहुत अच्छा जाए. थैंक यू सो मच जयशन जी. और मुझे पता है आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप सबका तो ख्याल रख ही रहे होंगे, पर अपना भी ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अगला गाना जाएगा अब्दुल एंड सायरा बानो के लिए, क्योंकि वो भी सभी को बेस्ट विशेज बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मॉर्निंग हो तो रेडियो मस्ती के साथ क्या बात है. थैंक यू सो मच. धनवेश्वर जी जुड़े हुए हैं अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ और कह रहे हैं, सबको विश भी कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं थोड़ी किसी बाहर ठंडी हवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि बॉडी को बड़ा अच्छा रहता है. क्या बात है, ये तो सच बात है. डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा, आपादू फैमिली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं राइज एंड शाइन प्रोग्राम को, और कह रहे हैं रेडियो मस्ती के बिना दिल नहीं लगता, सुबह सुबह चल जाए तो बस हमारा दिन बन जाता है. थैंक यू सो मच. कुमार देवी चरण जी जो कि टीचर ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के हैं और सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेज दे रहे हैं और कह रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करा करो. और आप जैसा टीचर हो और जो विश कर रहा हो रेडियो पे, तो आपसे मैं तो कहती हूँ आपके स्टूडेंट वैसे ही बहुत अच्छे होंगे. साधना जी, मुकेश जी जो कि लाल माटी से हैं, साथ जुड़े हुए हैं. अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो हमें भेज सकते हैं अपने दिल की बात या कोई डेडिकेशन, कोई विशेष किसी के लिए भी, हम यहाँ पे हैं वहाँ तक पहुँचा देंगे. एंजॉय कीजिए अपने गाने.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: जैसे तपते हुए सहराओं में सदियों बाद बरसात हो गई.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: बजकर 45 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। शुरुआत करते हैं अब हम राशिफल की। तो सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि,
1: आज अपनी पहली सोच पर भरोसा कीजिएगा। कोई नया मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 8।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज अपने दिल को हल्का रखिए। जिस बात की चिंता उसका हल धीरे धीरे मिल जाएगा। अपने लोगों के साथ मुस्कुराइए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिंता ही मुश्किल का जो जगह होती है वो बना देती है। तो आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि आज सिर्फ आपको रेस्ट करना और अपने ऊपर फोकस करना है। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 2।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज सुनने से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एक छोटी सी मुलाकात आपका दिन बदल सकती है। हर पल को खुल के जिए और अपने आप को समय दीजिए। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज घर की अच्छी ऊर्जा आपका साथ देगी। किसी अपने का साथ मिल सकता है, उनसे हिम्मत मिल सकती है। आप उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। दिल को शांति और उससे बड़ा उपहार कोई हो नहीं सकता, इसलिए आपको सिर्फ अपने दोस्तों या परिवार के साथ अपनी परेशानी को शेयर करना है और उनसे हिम्मत बटोर लेनी है। लकी कलर है वाइट, लकी नंबर है 6।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपकी पहचान आपके काम में आगे बनेगी। बिना दिखावे के आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम चूमने जा रही है। लकी कलर है सुनहरा, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज हर बात का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा है उसका आनंद लीजिए। खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा आराम दीजिए और अपने आप सब काम सही होंगे। लकी कलर है आसमानी यानी कि स्काई ब्लू, लकी नंबर है 4।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: आज किसी का दिल जीतने का मौका मिल सकता है। मीठे शब्द आपकी ताकत बनेंगे। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 9।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज अपनी बात विश्वास के साथ आगे रखिए। जो शुरुआत करेंगे उसका असर अच्छा दिखेगा। अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखिए। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 7।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज नया रास्ता आपको बुला सकता है। रोजमर्रा से थोड़ा सा अलग सोचिए। अच्छा अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। लकी कलर है बैंगनी, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज आपका धैर्य आपकी जीत बनेगा। एक एक कदम आपको मंजिल के करीब लेके आ रहा है। हो सकता है आपने बहुत सारी प्लानिंग की हो किसी काम को लेकर, तो उस पर प्रयास जारी रखिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। लकी कलर है क्रीम, लकी नंबर सॉरी लकी कलर है क्रीम एंड लकी नंबर है 10।

0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज अपनी अलग सोच पर गर्व कीजिएगा। कोई नया विचार आपको तारीफ दिला सकता है। खुद को खुलकर व्यक्त कीजिए। लकी कलर है नीला यानी कि ब्लू। लकी नंबर है 11।
0: पाइसेस मीन राशि।
1: आज दिल से निकली हर प्रार्थना पूरी होगी, रंग लाएगी। छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। दिन सुकून और प्यार से भरा मिलेगा आपको। लकी कलर बनेगा सी ग्रीन। लकी नंबर है 12। तो दोस्तों याद रखिए, सुबह सिर्फ सूरज की नहीं आपकी उम्मीदों की भी है। तो बस हमेशा मुस्कुराते रहिए। RM2 रेडियो की मस्ती के साथ जुड़े रहिए। राइज एंड शाइन प्रोग्राम सुन रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती। Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. मंगलवार 14 जुलाई 2026 के प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और नमस्कार. शुरू करते हैं हम स्थानीय खबरों के साथ. आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है. ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बस्ती किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है. मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं. ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं. और फ्रांस में बसे मॉरिशस के लोगों ने नए अवसरों के साथ बनाई नई पहचान लेकिन मातृभूमि से जुड़ाव आज भी कायम है. मॉरिशस में बढ़ती युवा बेरोजगारी के बीच बेहतर अवसरों की तलाश में युवा विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं. इस पर हम अपने आने वाली बुलेटिनों में ज़्यादा जानकारी देंगे. और बात करें राष्ट्रीय सभा के बारे में, राष्ट्रीय सभा का सत्र सुबह 11:30 शुरू हो रहा है. पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जाएगा. इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे. इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपये की रकम वाली सूटकेस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या कैसे जैसे मुद्दे शामिल होंगे. तथा मॉरिशस की संसद में आज मंगलवार के सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष फिर भड़का है. होमुज जल मार्ग को लेकर तनाव और गहरा हो गया है. इसी के चलते अमेरिका होमुज जल मार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. साथ रहे, बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर. मौसम का हाल आम हालत. पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और कुछ बारिश होगी. दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना होगा, पर दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल विकसित होंगे और थोड़ी

0: बारिश होगी। रात के दौरान पूर्वी और ऊंचाई वाली इलाकों में बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सर्द प्रांतों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सर्द प्रांतों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:46 पर। इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 PM।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:11 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही राइज एंड शाइन प्रोग्राम के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो मैं तो इतना ही कहूंगी, घर से निकलते वक्त दो तीन चीज़ें साथ लेके जाइएगा। एक लेके जाइएगा अम्ब्रेला, जैकेट और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि थोड़ा सा मौसम बार नासाज है। थोड़ा सा कभी बारिश हो जाती है, कभी ठंडा मौसम हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, अगर वो कैप डाल सकते हैं या थोड़ी सी वार्मर्स डाल सकते हैं तो बिल्कुल उनको दीजिएगा। थोड़ा सा गर्म रहेगी बॉडी तो अच्छी रहेगी। और जिनको थोड़ी सी खांसी वांसी जुकाम लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर चलता रहता है, तो आप थोड़ा सा गरम गरम कुछ चीज़ ले लिया कीजिए, कहवा ले लिया कीजिए, जिसमें थोड़ी सी लौंग इलायची वगैरह डाल के, नॉट ग्रीन इलायची, ब्लैक इलायची जो बड़ी वाली होती है उसको थोड़ा सा कूट लीजिए, जिंजर डालिए और थोड़ी सी सिप सिप लेते हुए पी लीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा हनी लीजिए। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मामा नानी की थोड़ी सी ये नुस्खे होते हैं, पर सच में काम करते हैं। तो चलिए भाई, दो तीन मैसेजेस के साथ में हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं, कह रहे हैं मैं जॉगिंग कर रही हूँ और ये प्रोग्राम सुनने के बाद तो दिल कर रहा है डांस भी कर लूं। तो क्या टेंशन है, किसने रोका है, डांस करो, मैं आपका साथ दे रही हूं। मुझे बताना कि आपने डांस शुरू कर दिया, मैं यहां डांस करूंगी। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच आपका। परमिला जी साथ जुड़ी हुई हैं और अपने हस्बैंड रंजीत जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और कह रही हैं उनको बस इतना ही कहना चाहती हूं, यू आर द बेस्ट एंड मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। हाउ स्वीट, ब्यूटीफुल मैसेज। ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, हमेशा खुश रहिए। साथ में आज है सुया जी का बर्थडे, ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ किसेस फ्रॉम पति लाल दे बिहारी जी, और उनको भी बस इतना ही कह रहे हैं क्या शाम को गिफ्ट चाहिए ये बताओ। हाय रे क्या बात है, ऐसे मैसेजेस आने चाहिए, मजा आ जाता है। बस हस्बैंड पूछ लें क्या गिफ्ट चाहिए, तो आपने भी कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं मांगना, छोटा सा मांगना है जिससे उनका दिल भी रह जाए और खुश भी हो जाए, और फिर हम ये कहेंगे बड़ा दे दें तो उनका दिल बड़ा, क्या बात है। चलिए जी, सुया जी के लिए एक और बेस्ट विशेज आए हैं मामा शारदा जी की तरफ से, शारदा जी की तरफ से, भाई संजीव, सिस्टर इन लॉ रश्मि एंड उनकी बेटियां किमी एंड कीर्ति की तरफ से, और उनको बोल रहे हैं कि भाई आपका बर्थडे में आज स्पेशल डे ज़रूर रहेगा, बट हम आपको इतना बोलना चाहते हैं कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस देने के लिए, और जिनको भी भेजना है किसी के लिए बर्थडे विशेज या कोई और डेडिकेशन या एनिवर्सरी के लिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499124 पर। तब तक इन्जॉय कीजिए अपना ये गाना, और स्पेशली सुया जी आपके लिए।

0: खड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6:30 हैं। मंगलवार 14 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फीफा विश्व कप सेमीफाइनल के रोमांच ने पोर्ट लुइस की सड़कों पर उत्साह, जश्न और भावनाओं का माहौल बना दिया है। फ्रांस के राष्ट्र दिवस के अवसर पर मॉरिशस और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक एवं बहुआयामी संबंधों को किया जा रहा है याद। फ्रांस में बसे मॉरिशस के लोगों ने नए अवसरों के साथ बनाई नई पहचान, लेकिन मातृभूमि से जुड़ाव आज भी कायम है। मॉरिशस में बढ़ती युवा बेरोजगारी के बीच बेहतर अवसरों की तलाश में युवा विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। राष्ट्रीय सभा में आज प्रधानमंत्री के प्रश्नकाल, पीएमक्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार, नशा, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रसभा में ही जल सुरक्षा, मेट्रो एक्सप्रेस के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं और खिलाड़ियों के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा जैसे मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत देखभाल और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष फिर भड़का, होमोज जलमार्ग को लेकर तनाव और गहरा। अमरीका होमोज जलमार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले के मौके पर उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। पोर्ट लुइस की सड़कों पर मॉरिशस के समर्थकों और पर्यटकों ने इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का पूरे जुनून के साथ आनंद लिया। खुशी, निराशा और जीत को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग रहीं। कुछ लोगों ने स्पेन की जीत का स्वागत किया, जबकि कुछ अन्य चाहते थे कि फ्रांस फाइनल में अपनी जगह बनाए। हमारी पत्रकार निर्माण नारायण रेड्डी राजधानी की सड़कों पर लोगों से मिली और इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर उनकी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं जानी। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
1: I don't know exactly, but I think that the France will win. The big emotions for me.
2: Pour la France, comment on va jouer ensemble.
3: Mais la France, 2-1. Ben là, comme nous ici, on va commencer. Nous sommes regardés hier à l'hôtel là-bas. On va faire profiter pour faire un petit coucou à l'hôtel coin de mire.
4: Sûr. DN peut-être. Un petit chose pour la France aussi, mais l'Espagne de préférence. Aïe, super. Un joli moment de famille. Nous passons un bon moment. Toujours, belle qui y était, un petit jeté, café, un petit gâteau. On tient
5: la
4: famille.
5: La France est une meilleure équipe, mais c'est bon. L'Espagne ne peut pas. La France, il faut jouer. Il y a des prolongations, il y a l'extra time, il y a des pénalties. Mais je crois que la France va sur la finale.
6: Donc, tu étais de bon l'équipe 50-50. Je ne dire que c'est un bruit. C'est un démon de l'équipe qui là. Non, moi, je suis meilleur, je suis le football là. Je suis content de l'Espagne. Je suis content de l'Espagne. Parce qu'elle avait longtemps pas gagné. La France, il y a un sorti. Mais il va encore gagner. J'ai envie de gagner.
0: आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बास्टी किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी

0: रही है। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट जॉन फ्रांसवा लिकनी की तैयार किया हुआ और विवरण यात्रा मिश्रा का है।
1: पूर्व में इल दे फ्रांस के नाम से जाने जाने वाला मॉरिशस साल 1715 से 1810 तक एक फ्रांसीसी उपनिवेश रहा। इस अवधि ने मॉरिशस की संस्कृति, कानूनी व्यवस्था, भाषा पर आज तक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इसीलिए जब मॉरिशस ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो फ्रांस के साथ उसके राजनयिक संबंध बहुत जल्द ही स्थापित हो गए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कई समझौतों और पहलों के माध्यम से संचालित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र शामिल हैं। पिछले साल फ्रांस मॉरिशस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक और पांचवा सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा। इसके अलावा 200 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां मॉरिशस में स्थापित हैं। वहीं फ्रांस मॉरिशस में आने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत भी है, जहां कुल पर्यटन आगमन में उसका हिस्सा लगभग 25% का है। भाषा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है। हालांकि फ्रेंच मॉरिशस की औपचारिक भाषा नहीं है, फिर भी इसका व्यापक उपयोग दैनिक जीवन, स्कूलों और विशेष रूप से मीडिया में किया जाता है। मॉरिशस की भौगोलिक निकटता फ्रांस के अधीन रियूनियन टापू से होने के कारण हिंद महासागर में रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग विकसित हुआ है। इस क्षेत्र में नवीनतम सहयोग समझौते पर साल 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। लोगों की आवाजाही के मामले में मॉरिशस में लगभग 11,000 फ्रांसीसी नागरिक वाणिज्य दूतावास के रजिस्टर में पंजीकृत हैं। वही मॉरिशस के नागरिकों को शेंगेन क्षेत्र में अल्पकालिक यात्रा के लिए वीजा से छूट प्राप्त होती है। हालांकि दोनों देशों के संबंधों में एक मुद्दा अब भी लंबित है, तोमले टापू। लंबे समय तक दोनों देशों ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया और साल 2010 में इसके संयुक्त प्रबंधन को लेकर एक समझौता तय हुआ, लेकिन इस समझौते का अनुमोदन अब भी प्रतीक्षित है।
0: राष्ट्र दिवस के उत्सवों से आगे बढ़कर फ्रांस आज भी अनेक मॉरिशनों के लिए अवसरों की धरती बना हुआ है। पढ़ाई, करियर और विवाह के बाद फ्रांस का रुख करने वाले कई मॉरिशन आज वहां अपनी नई पहचान और सफल जीवन बना चुके हैं। इसके बावजूद उनका अपनी मातृभूमि मॉरिशस से गहरा भावनात्मक जुड़ाव आज भी बरकरार है। उनकी जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि फ्रांस ने उन्हें रेस्टोरों, व्यवसाय, संस्कृति, मीडिया और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने और नई संभावनाओं को साकार करने का अवसर दिया है। आज मंगलवार सुबह 11:30 राष्ट्रीय सभा की कार्रवाई फिर शुरू होगी। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जाएगा। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूटकेस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या जैसे मुद्दे शामिल हैं। राजमिला स्तमुनि, यशा मिश्रा।
1: सांसद अरविंद बाबाजी एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच से जुड़े सवाल उठाकर सत्र की शुरुआत करेंगे। विपक्ष सांसद चेतन बाबूलाल प्लास्टिक बोतलों पर लगाए गए 2 रुपए के उत्पाद शुल्क को लेकर सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या इससे प्राप्त राशि पर्यावरण कोष यानी एनवायरनमेंट फंड में जमा की जाएगी और क्या स्थानीय निर्माताओं को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग या रिसाइकलिंग की ओर बढ़ने में सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई गई है। रविराज बिचुक पिछले 5 वर्षों में मॉरिशस और विदेशों में सामने आए फर्जी पासपोर्ट मामले का विवरण मांगते हुए इस मुद्दे को उठाएंगे। उमना दोहियाऊ प्रधानमंत्री से ऑनलाइन नस्लीय घृणा फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सवाल करेंगी। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने पर भी चर्चा होगी। अन्य मुद्दों में

0: नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध, तयहोश में जब्त किए गए 114 मिलियन रुपए मामले की जांच, भूमिगत मार्गों की सुरक्षा, जेल प्रहरी बल की संख्या, बैंकिंग डेटा की सुरक्षा और पूर्व सांसदों को आवंटित सरकारी वाहनों का विषय भी शामिल हैं।
1: मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा में आज मंगलवार के सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे, जिनमें जल आपूर्ति की सुरक्षा, अवैध पानी कनेक्शन, SSR अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो एक्सप्रेस के संभावित विस्तार, सामी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना जैसे विषय शामिल हैं। जेनी यालापा, रजनी बेकर।
2: आज जल क्षेत्र से जुड़े कई सवालों पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। सांसद जोआना ब्याहोंजे ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन से सरकार की जल सुरक्षा रणनीति के बारे में जानकारी मांगेंगे। वे ये जानना चाहेंगे कि क्या समुद्री जल के डिसैलिनाइजेशन पर योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर जल वितरण नेटवर्क में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसी क्षेत्र से जुड़े एक अन्य सवाल में मंत्री से जनवरी 2025 से अब तक सामने आए अवैध पानी कनेक्शनों की जानकारी मांगी जाएंगी। सांसद खुशा लुबिन अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई और वसूले गए जुर्माने से प्राप्त आय का विवरण जानना चाहेंगे। जल भंडारों की स्थिति भी चर्चा में रहेगी। सांसद अनाबेल सभावादी जलाशयों में वर्तमान जल स्तर, आने वाले महीनों में मांग पूरी करने की क्षमता और निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर स्पष्टीकरण मांगेंगी। परिवहन क्षेत्र में सांसद मनोज सरसागर रामगोलान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और देश के दक्षिणी हिस्से तक मेट्रो एक्सप्रेस के संभावित विस्तार से जुड़ा सवाल उठाएंगे। भूमि परिवहन मंत्री से इस परियोजना की स्थिति पर जानकारी देने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री से सामूहिक आपातकालीन सेवा के संचालन, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या, उनकी कार्यशैली स्थिति, जनवरी 2025 से हुए रखरखाव खर्च और इमरजेंसी कॉल पर औसत प्रतिक्रिया समय की जानकारी मांगी जाएंगी। खेल के क्षेत्र भी संसद के एजेंडा में शामिल रहेगा। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए मुफ्त चिकित्सा कवरेज सहित बीमा योजना के कार्यान्वयन पर सवाल उठाया जाएगा। युवा एवं खेल मंत्री देवेन्द्र नागालिंगम से इस योजना की प्रगति के बारे में जानकारी देने की उम्मीद है। इन सभी मुद्दों के चलते मंगलवार का संसदीय सत्र महत्वपूर्ण बहसों और चर्चाओं का केंद्र रहने वाला है।
1: कुछ बच्चों में दिखाई देने वाले व्यवहार संबंधी विकारों के पीछे अक्सर ऐसे कारण होते हैं जिन्हें पहचानना और उचित तरीके से संभालना आवश्यक होता है। सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए एक विशेष केंद्र स्थापित करने की योजना के बीच क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों के मूल्यांकन पर आधारित एक उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। संचार में कठिनाई, संवेदात्मक समस्याएं या विकास से जुड़े अन्य कारण कुछ बच्चों में ऐसे व्यवहार के पीछे हो सकती है। बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के साथ काम करने वाली स्पीच थेरापिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट सत्यावानी वियाबेदन ने मौजूदा संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने और किसी भी प्रकार के अलगाव या भेदभाव से बचने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। Anjali Poulchan qui report.
3: Il y a différentes raisons. Par exemple, un retard de langage peut exhiber des problèmes de comportement, des problèmes de la langue.
1: कई कारण हो सकते हैं, जैसे बोलने में देरी से व्यवहारिक संकेत देख सकते हैं, पढ़ने में मुश्किल हो सकती है तथा इसके साथ भाषाओं को समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। सेंसोरियल मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। संस्थान को पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार होना चाहिए जिससे ऐसे प्रभावित बच्चों का इलाज हो सके। यहाँ उनका मूल्यांकन करना भी जरूरी है जिससे पता लगाया जा सके कि किन कारणों से ऐसे व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई कारण हो सकते हैं। इसके बाद सकारात्मक अनुशासन स्थापित करना चाहिए जिससे पेशेवर वैज्ञानिक व सबूतों के आधार पर हस्तक्षेप कर पाएं और इन बच्चों की सहायता कर पाएंगे। बहुत सतर्क भी होना चाहिए कि ये संस्थान किन उपकरणों से

0: लेस हो जिससे बच्चों को वर्गीकृत व सेग्रीगेट नहीं बल्कि सम्मिलित किया जा सके।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार होमुज जलमार्ग में ईरान द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने और कुछ जहाज़ों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अमेरिका ने हवाई हमलों और समुद्री ड्रोन अभियानों की नई श्रृंखला शुरू की है। वहीं दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने कल सोमवार को होमुज जलमार्ग में दो तेल टैंकरों पर हुए हमले के लिए ईरान पर बेहद दुस्साहसिक हमला करने का आरोप लगाया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका होमुज जलमार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच लगातार तीसरी रात भी हमले किए गए। बते मौसम के हाल की ओर आम हालत। पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और थोड़ी वर्षा होगी। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा सिवाय पश्चिमी क्षेत्रों में बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। रात के दौरान पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा सेंट्रल प्लेटो पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:46 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार और फ्रेंच देश का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी कादर हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। विवेकानंदा स्ट्रीट लाफ्लोरा में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री अजीत सिंह रंगलाल जिन्हें मुन्नू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी मां रजनी रंगलाल के घर लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांववा की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टू डेट 3 PM। सिरतन रोड बॉशेरी में 24 ईयर्स ओल्ड के श्री धूषण रानसू जिन्हें बर्न के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके पिता मनोज रामदास के घर बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांववा की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टू डेट 4 PM। न्यू रोड रोशनों में 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंदिरा प्रयाग जिन्हें पोम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके भाई आनंद प्रयाग के घर रोशनों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 1 PM। नंबर 61 क्वेन स्ट्रीट पोर्टविस में 82 ईयर्स ओल्ड की श्री उपेंद्र नार बीतल जिन्हें उपेन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर पोर्टविस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालेन की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टू डेट 1 PM। जफाजुल्लेन पृथ्वीराज सैपिया में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ज्ञानती लाला पैदाशी नाम रामधोनी और जिन्हें नानी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी बेटी संध्या मंगर के घर

0: पृथ्वी वैसे सेपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कौन सा सेपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडे एट 10 AM मोंजेलाओ रोड रॉसबेल में 73 साल के 73 years old के श्री नित्यानंद बिहारी जिन्हें सत्यम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगी जानी की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टूडे एट 1 PM रॉय रोड आमोरी में 71 साल के 71 years old के जनाब आमिर अमजा दाऊ जिन्हें आज़ाद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10:30 बजे इनके मकान आमोगी से उठाकर दफनाने के लिए वहीं का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM लिटो रोड रॉसबेल में 56 साल के 56 years old के श्री कविराज सिंह उजागिया जिन्हें रवि के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी लाला शर्मिला राय गोविंद उजागिया के घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगी जानी रॉसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडे एट 2 PM मकाउलेन थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 81 साल की 81 years old की श्रीमती सुबामा मुतुसामी पैदाश नाम सावरी और जिन्हें सिंधा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके घर थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाबुचिक की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुडे एट 10:30 AM इसकी रोड पाई में 72 साल की 72 years old की श्रीमती देवंती अकू पैदाशाम लोफॉ जिन्हें मदम गौजा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनकी बेटी महादेव अकू के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ऋषि की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुडे 10:30 AM ये शुभ समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। नंबर 14 नाथ बिल्डिंग बोबासा में अस्सी साल की श्रीमती कमला देवी चरितर पैदाश्रम रामदीन और जिन्हें सकुन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 2:30 बजे लाशा पेलाओ दौतिलियन स्वयं बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबैल की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टूडे एट 10:30 PM सीते उदेसी नंबर 22 पीतो में 58 साल के 58 years old की श्री सनासी रासी जिन्हें रामैन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनकी बेटी पल्लवी एसमियत के घर पीतो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्पेरांस पीतो की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टूडे एट 10:30 PM पेटी कॉन ग्रांगोब में 55 साल की 55 years old की श्रीमती सीता चतुरी जिन्हें सीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के घर ग्रांगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2 PM एम्पास उजिया बॉशेरी में 73 साल की 73 years old की फरीदा उजिया पैदाश नाम गुलाम हुसैन और जिन्हें फरीदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई है इनका जनाजा कल रात उनके शौहर फिरोज उजिया के मकान बुआशरी से उठाकर गांव बुआ का कब्रस्तान ले जाया गया फ्यूनरल लास्ट नाइट एट 10 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।

0: RBC Radio presents One Day RJ.
1: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the musty.
4: Hey.

तो बस दोस्तों आज की सुबह यहीं तक, उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट के साथ शुरू हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मौसम ठंडा है, गर्म कपड़े पहन के जाइएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, अब आपको साथ मिलेगा विदित का मॉर्निंग बीट में। एंजॉय कीजिए, टेक केयर।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह के 7:06 हुए हैं गाइस. मैं हूं विदिता, आ गई हूं साथ देने के लिए आपके मॉर्निंग बीट में. और जब हम कहते हैं मॉर्निंग बीट तो हमारा एक काम होता है आपके स्ट्रेस को ढिशुम ढिशुम करना, उसको बीट करना और उसको भगा देना आपके लाइफ से, आपके जिंदगी से. तो चलिए यहां पर भी थोड़ी कोशिश यही रहेगी. आज है ट्यूजडे 14th of July. जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग उनको भी सोचे जो आसपास में हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सरप्राइज करना है. तो यहाँ पर करना क्या है हमें, बस हमारा आप साथ होंगे 9 बजे तक, मस्त गाने होंगे. भाई आज तुम अपना दिमाग घर पे भूल के आए हैं, चलो अगर झेल सको मुझे तो झेल लेना. हमारा क्या है, हम तो बस बहाने ढूंढते हैं आपके पास, आपके साथ रहने के लिए. अगर आपके पास बहाना है तो ठीक है.
0: Morning beat.
1: James. RM2 Radio Musti in the mix.
3: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our right.

0: Actu. Radio Musty.
1: Un nouveau voyage commence pour Maurice. Avec Ethiopian Airlines, la route Maurice-Addis Abeba ouvre l'accès à plus de 145 destinations à travers l'Afrique et le monde. Pour les affaires, les études, la famille ou l'envie de découvrir ailleurs, une nouvelle option s'offre à vous. Contactez votre agence de voyage pour organiser votre prochain départ avec Ethiopian Airlines.
0: RM2 Radio Musty.
2: Yo, hello. Testing 1-2.
3: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका.
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363.
3: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस.
2: डोंट मिस इट.
0: RM2 Radio Musty.
4: Avec Canal+, je stream grand matin, je stream midi, je stream tantôt, je stream à soir. L'autre tout moment, on est grand connecté. Côte moi, la mienne, côte belle mienne, n'importe qui l'est. T'as y qui te stream, Goubza? Dernier blockbuster, comme Anaconda, le Canal+, House of the Dragon, saison 3, le HBO, The Lander, le Star Gold, et nous la home, saison 3, le Netflix, à partir de 500 roupies par mois. App Canal+, un clic.
5: Canal+, c'est plus que vous ne l'imaginez. La plateforme qui réunit cinéma, séries, sport, telenovelas, Bollywood, mais aussi HBO, Netflix, le tout au même endroit.
6: Offre soumise à condition à Maurice. Modalité sur canalplus.com.
7: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Saveurs réconfortantes, produits du quotidien et petits plaisirs à partager. Tout vous attend chez Winners. Vivez pleinement la saison avec encore plus de choix et toujours plus d'économies. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
8: On est tous winners.
0: RM2 Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो भाई, अभी वही अम्मा करने की बारी आपकी है। नहीं, डांस नहीं कराऊंगी, बस आपके दिमाग के घोड़ों को भगाऊंगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती, वेलकम टू मॉर्निंग बीट विदिता के साथ। सुबह के 7:19 हुए हैं और आपके लिए हम लेकर आए हैं एक सवाल। एक सवाल की कीमत तुम क्या जानो, आप जान जाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको हम टिकट दे रहे हैं। सो अभी आपको मौका मिल रहा है टू विन वन टिकट टू द गोल्डन 90s era 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट। होने वाला है 25 जुलाई को आज फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC पाई। तो अगर आप

90s का जो ईरा था उसको आप जीना चाहते हैं. वैसे तो अभी भी वो गाने बहुत सारे गाने गाते हैं और उनकी आवाज में वो मैजिक है, वो जादू है और थोड़े नॉटी भी हैं एक्चुअली. हम मुझे और विकास को मौका मिला था उनसे मिलने का, उनसे बात करने का. बहुत मजाक किया है, बहुत बात करते हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं और इतने प्यारे हैं ना. और गाते गाते मैं खुद

हैं SBICC पाई में हो रहा है इनका कॉन्सर्ट और टिकट्स जो हैं 850 रुपीस से शुरू हो रहा है ये टिकट्स आपको mochike.mu और गिजो तायु पर मिल सकता है तो हॉटलाइन का नंबर भी दे देती हूँ अगर आप रिजर्व करना चाहते हैं इट्स 4669999 तो चलिए मेरा सवाल आपसे जी हाँ मेरा सवाल आपसे आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी मूवी है वैसे ये कौन सी मूवी है जिसमें अभिजीत जी ने गाना गाया है ये फिल्म आई थी 1999 में जी हाँ ये फिल्म आई थी 1999 में और इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे हैं जी हाँ इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं इस मूवी के आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी मूवी है और मैं आपको और हिट्स देना चाहती हूँ टिप्स देना चाहती हूँ तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये मूवी जो है इस डायरेक्टेड बाय खातिर जी हाँ ये मूवी जो है इस डायरेक्टेड बाय खातिर आपको मुझे बताना है ये कौन सी मूवी है इसमें सोनाली बेंद्रे में है और गाना मैं गा के नहीं बता सकती लेकिन इस गाने में नाज़नीन है और वो उनको कहते हैं कि सुनो तुम सुनो तो चलो 1999-2000 की मूवी इस मूवी को डायरेक्ट किया है खातिर ने आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी है जल्दी कीजिए मुझे सही जवाब भेजिए ऑन 549 and 1294 वैसे तो कहते हैं कि 9th July 1999 को ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई थी तो जल्दी करें जवाब भेजें

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: नाचो नाचो खुश होकर नाचो, झूम के नाचो, घूम के नाचो, नाचो भाई मैं ये खुशी के मारे, क्योंकि यहाँ पर हमारा लकी ड्रॉ हो गया है और अब समय हो गया है कि हम ये भी बता दें कि हमारे आज के जो विनर है वो कौन है। जी हाँ, हमने आपसे एक बहुत ही आसान से सवाल किया था, इतने सारे लोगों ने इतने आसानी से जवाब दे दिया। हमने आपसे बोला था ना कि आपको मुझे एक फिल्म का नाम बताना है कि वो कौन सी मूवी है जिसमें अभिजीत जी का एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जिसमें वो नाज़दीन के बारे में बात करते हैं। एंड यस, द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय खातिर एंड इसमें सोनाली बेंद्रे के साथ कुणाल सिंह भी थे, जॉनी लेवर, अनुपम खेर, इतने सारे कैरेक्टर्स थे और ये फिल्म आई थी 1999 में। आपको बताना था कि ये कौन सी मूवी है एंड द मूवी इज दिल ही दिल में। चलिए देखते हैं विनर कौन है, कौन है जो जीत गया इनाम। तो यहाँ पर सही जवाब देखकर लेडीज एंड जेंटलमैन इनका नाम आया है, कविता सुकंद। आप रहती अगोशन, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दिल ही दिल में इज द राइट आंसर और आपको मिल रहा है 1 टिकट टू द गोल्डन 90s ईरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है सैटरडे 25th of July को 7:30 PM SBICC पाई में। सो यू गोना स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रिलीव द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइंड बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा। सो यू कैन एंजॉय योर evening of timeless melodies, legendary hits and pure musical magic. Tickets aapko mil sakta hai muchiki.mu aur rezo tayo mein, aur iske liye aapko reserve karna hai, call karna hai is hotline number pe, it's 466-9999 aur tickets jo hai start ho

0: एब्सोल्युटली जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है और मैं कुछ बता तो नहीं सकती क्योंकि जैसे मैं हेलो कहूं वो पहचान लेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
0: सिया।
1: गुड मॉर्निंग।
0: जिस तरह से आपने बोला गुड मॉर्निंग ऐसा लगा जैसे आपको पता है कि आपके यहाँ कौन है, आप किससे बात कर रही है।
1: आपको पहचान लिया।
0: देखा, हमें जानती थी पहचान ही लेंगे। सो
1: क्योंकि ये मेरी बेस्ट रेडियो मस्ती टीम है।
0: ओ माय गुडनेस, यानी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना दिमाग लड़ाती हूँ, इसलिए मैंने बोला आज मैं दिमाग घर पे रख के आई हूँ कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, जैसे मैं फोन करती हूँ लोग पहचान ही लेते हैं। सो
1: क्योंकि आप बेस्ट हैं।
0: ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच सुया। सो मैं वेदिता अपनी पूरी रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आपको विश करती हूँ यहाँ पे

0: Thank you very much. Happy birthday.
1: अच्छा बताइए.
2: Thank you, Venita ji.
1: तो बताइए आज का प्लान क्या है?
2: आज मेरी प्लान है, आज मैं घर पर तो हूँ अभी, बच्चों को तैयार कर रही हूँ. मेरे छोटे बच्चे हैं, वंश है और मेरी अवनी है जो स्कूल चली गई है
1: जी.
2: तो अभी मैं मेरे छोटे वंश को प्रिपेयर कर रही हूँ.
1: ओके.
2: तब मैं देखूंगी थोड़ी देर में क्या करना है, क्योंकि शाम को तो निकलना है अभी ना.
1: मैं यही कहती हूँ कि प्लीज भाई, लेडीज जो होती है उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराओ. एंड उनका बर्थडे है तो उनको बाहर ले जाओ. ये घर पे वही खुद उनकी बर्थडे, उन्हीं के बर्थडे पे उन्हीं से खाना बनवाते हैं, उन्हीं से सेवा करवाते हैं, उन्हीं से क्लीनिंग करवाते. नहीं, ऐसा नहीं होगा. बाहर ले जाओ, खाना खिलाओ और शॉपिंग कराओ. सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सुया. आपकी बेटी ने आपको सरप्राइज किया है. आपकी बेटी श्वेता बना के इससे उन्होंने आपको सरप्राइज करने के लिए हमें कहा था. तो उनकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू सो मच. यू आर द बेस्ट.
2: थैंक यू.
1: आपको बता दूं, लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है एक वाउचर. अरे वाउचर लेके जा रही हूँ, हाँ, इसीलिए तो हमने आपको सरप्राइज किया. आपको लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है जो आपको कलेक्ट करना है आज या कल, और अपने आईडी कार्ड के साथ. ठीक है, आपको आना है, दो दिन है. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.
2: थैंक यू वेरी मच. ओके.
3: कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका. वेलकम टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363.
3: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और

0: आपका चांस
1: डोंट मिस इट
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
3: स्पोर्ट्स न्यूज
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स
0: जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। चलिए जी अरविंद जी का स्वागत करते हैं। अभी आपको पता ही है कि आज पहला सेमीफाइनल होने वाला है। अरविंद तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही हैं। चलिए आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आरएम2 लिसनर्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
6: फ्रांस और स्पेन में से एक टीम आज रात वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जाएगी। पहला सेमीफाइनल आज। यूरोप के दो दिग्गज दो हैवीवेट्स आमने सामने डला स्टेडियम में। ये एक वर्ल्ड क्लब क्लासिक से कम नहीं। फ्रांस की टीम में टॉप स्कोरर गोल्डन बूट चैलेंजर किलियन एम्बापे हैं, साथ में उस्मान देम्बेले, माइकल ओलिजे, वाकोला दुए और चर्की भी है। जानलेवा अटैकिंग लाइनअप फ्रांस में। यूरो 2024 में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराया था सेमीफाइनल में। स्पेन की टीम के बारे में कहा जा रहा है कि भले ही सेमीफाइनल में है पर द बेस्ट फुटबॉल इज येट टू कम, मतलब अभी तक लाहोरा अपने बेहतरीन खेल के करीब है। स्टार खिलाड़ी लामिन यमाल अभी तक अपना खास कमाल नहीं दिखा पाया है। कल वो 19 साल का हो जाएगा। अभी तक केवल एक गोल स्कोर किया है पर 4 गोल स्कोर करने वाला मिकेल ओयोजाबाल फिर सब्स्टिट्यूट मिकेल मोरिनो भी है। फ्रांस के लिए 8th वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बैक टू बैक तीसरा। स्पेन की टीम 36 मैचों में अनडिफीटेड अपराजित है। इस वर्ल्ड कप में केवल एक गोल कंसीड किया है। स्पेन वर्सेस फ्रांस क्लासिक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आज रात 11 बजे लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर भी। ट्रांसफर न्यूज। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आंद्रे सांटोस को साइन कर लिया है। ब्राजील का इंटरनेशनल खिलाड़ी ओल्ड ट्राफर्ड में आ गया। साथ में यूनाइटेड एस्टन विला से चेलेमांस के पीछे है। क्रिकेट। भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक जीत। लॉर्ड्स में खेले गए पहले विमेंस टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 270 रनों से हराया। स्नेह राणा 4 विकेट ले पाई। और जैसे कल हमने आप लोगों को बताया, मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सदस्य बन गया है। स्कॉटलैंड में मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन के प्रेसिडेंट सलीम भट्ट है वहां पर और इस ऐतिहासिक कदम पर उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की। मॉरिशस के लिए क्रिकेट के विकास में एक नया पन्ना खोला गया। तो इट्स द फाइनल काउंटडाउन वर्ल्ड कप फाइनल में जाने के लिए आज टिकट। ये फ्रांस के लिए या स्पेन के लिए अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि ये दो यूरोप के दो महारथी दो दिग्गज हैं। 11 बजे से लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर जरूर दिखेगा और आपको ज्यादा जानकारियां देंगे विद द वर्ल्ड कप मैगजीन जो आप सुन पाएंगे 8:30 बजे 8:30 ऑन आरएम2। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।
0: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
7: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Puis cassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc.

0: को।
1: मॉर्निंग बीट
2: चेंज RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: हम भी उड़ान भर चुके हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मॉर्निंग बीट विदिता के साथ ऑन रेडियो मस्ती. गाइस होप यू आर डूइंग गुड. अगले गाने के साथ बढ़ेंगे हम 8 बजे के समाचारों की ओर.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.

बजे के समाचार में सब लोग की स्वागत करल जाता सब कोई के नमस्ते या प्रणाम सबसे आगे देश के बारे में बतियाओ अब जा आज 14 जुलाई की फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस मनावल जाता आज के दिन 14 जुलाई 1789 के बरिस के भैल ऐतिहासिक बास्टी किला पर कब्जा के घटना के याद में ई दिन मनावल जाला जो फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत के प्रतीकात्मक पहल का कदम के रूप में माना जाला। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनीतिक संबंध हमेशा से गहरा और बहुआयामी रहल बाटे। संबंध साझा इतिहास के नींव पर आधारित है और कई गो विभिन्न क्षेत्र में लगातार सहयोग के माध्यम से ये आर मजबूत होते जाता। गौरतलब बाटे कि दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंध कई गो समझौता आर पहल के माध्यम से संचालित बाटे जेकर में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था आर व्यापार के क्षेत्र बाटे। पहले बरिस फ्रांस मॉरिशस के दूसर का सबसे बड़ा ग्राहक और पांचवा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनल यानी कि हुआ से सबसे जस्ती चीज मंगावल जाला। राष्ट्रीय दिवस के उत्सव से आगे बढ़ के फ्रांस आज भी कई गो मॉरिशन लोग खातिर अवसर की धरती बनल बा। पढ़ाई करिय आर यानी कि काम करे खातिर आर शादी करला के बाद फ्रांस के रुख करे होला कई गो मॉरिशन आज हुआ अपन पहचान आर सफल जीवन बना ले हवन जा। इकर बावजूद उ लोग अपन मातृभूमि मॉरिशस से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखेलन जा। लोग के जीवन यात्रा ई बात के प्रमाण है कि फ्रांस उ लोग के रेस्टोरेंट व्यवसाय संस्कृति मीडिया और उद्यमिता जैसन कई गो क्षेत्र में आगे बढ़े के आर नवा संभावना के साकार करे के अवसर देली बाटे। बात करी जा राष्ट्रीय सभा के बारे में आज मंगल फजीर के 11:00 से राष्ट्रीय सभा के सत्र शुरू हुई और पारंपरिक तरीका से प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम PMQT लगी। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछल जाए। इस सवाल में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जाँच प्लास्टिक बोतल पर लगे होला उत्पाद शुल्क फर्जी पासपोर्ट के मामला मादक पदार्थ से जुड़ल गतिविधि 114 मिलियन रुपया के रकम होला सूटकेस के मामला के जांच 2014 से 2024 के बीच आगे के सांसद देने से इस्तेमाल कर गल वाहन के संख्या जैसन मुद्दा ई में शामिल बाटे। आर मॉरिशस के संसद में आज मंगल के सत्र के बखत कई गो मंत्री से लगभग 50 सवाल पूछल जाए। इस सत्र में कई गो महत्वपूर्ण मुद्दा पर भी चर्चा हुई जेकर में जल आपूर्ति पानी के जन आपूर्ति के सुरक्षा है अवैध पानी कनेक्शन SSO अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ले मेट्रो एक्सप्रेस के बनाई के यानी कि ओकर विस्तार करे के सामी आपातकालीन चिकित्सा सेवा और उच्च स्तरीय खिलाड़ी लोग खातिर मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना जैसन विषय शामिल बाटी। आर कई गो ऐसन लयिका में दिखल जाला व्यवहार से संबंध कई गो विकार के पाछे अक्सर कई गो कारण रहेला जेकर पहचान आर उचित तरीका से संभाले के बहुत आवश्यकता रहेला। सरकार दिने से ई सब लयिका लोग खातिर एगो विशेष केंद्र स्थापित करे के योजना के बीच क्षेत्र के कई गो विशेषज्ञ ई बात पर जोर देवत हवन जा कि हर एगो लयिका के व्यक्तिगत जरूरत के मूल्यांकन पर आधारित एगो उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाए के चाही। संचार में कठिनाई यानी कि बोले बतियाई में कठिनाई होएला या फिर विकास से जुड़ा दूसर कारण कुछ लयिका लोग में व्यवहार के पीछे ई एगो कारण हो सकेला। लयिका लोग में व्यवहार संबंधी समस्या के संगे काम करे होला स्पीच थेरापी ऑडियोलॉजिस्ट सत्यावानी वीराभद्रन बोलन की मौजूदा संस्था में क्षमता के मजबूत करे के आर कोनो प्रकार के अलगाव या भेदभाव से बचे के महत्व पर ध्यान केंद्रित करे के जरूरी है। और दूसर देश के समाचार में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आधिकारिक रूप

0: से समाप्त हो गल बाटे। दोनों देश के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ल बाटे। रिपोर्ट के अनुसार होमूज जलमार्ग में ईरान देने ऐसे व्यापारिक जहाज पर हमला करला और कुछ जहाज पर अपन नियंत्रण में कुछ जहाज के अपन नियंत्रण में लीला के बाद अमेरिका हवाई हमला और समुद्री ड्रोन अभियान के एगो नवा श्रृंखला शुरू कर ली बाटे। हुए परी दुबई संयुक्त अरब इमीरात कालेंदी के होमूज जलमार्ग में दूगो तेल टैंकर पर हमला खातिर ईरान पर बहुते दुस्साहिक हमला करे के आरोप लगैले बाटे। ई हमला में एक जना के मौत हो गल बाटे जबकि 8 जना के घाव लगल। ई बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करले बाटे कि अमरीका होमूज जलमार्ग से जुड़ल नवा नाकाबंदी उपाय के तहत 20% के शुल्क लगाए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलन कि अमरीका ईरान पर बहुत कड़ा कार्रवाई करता। दोनों देश के बीच बढ़त तनाव के बीच लगातार तीसरका रात के ई सब हमला भेल। तेही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भेल। ध्यान से साथ देना ओका खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: Morning Beat.
3: James. RM2, Radio Musty in the mix.

0: सुबह के 8:11 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. हमारी सेकंड आवर में आपका स्वागत है मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर विदिता के साथ. यस गाइस, चलो सुबह सुबह तो मौसी ने भूखी लगा दी. एक गर्मा गर्म दाल पिठा, वाह वाह वाह वा, क्या बात है. हाय हाय, भूख लग गई होगी ना. चलो ब्रेकफास्ट ले रहे हो, अच्छी बात है. इसी के साथ चलिए ये भी जान लेते हैं कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है. मिलते हैं अशीता से.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: मौसम का हाल, आम हालत, पूर्व से आने वाले बादल हमारी स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और कुछ बारिश होगी. दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना होगा, पर दोपहर बाद में पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल विकसित होंगे और थोड़ी बारिश होगी. रात के दौरान पूर्वी और ऊंचाई वाली इलाकों में बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी. हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के जुआर उठेंगे. खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है. तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच. आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:46 पर.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Saveurs réconfortantes, produits du quotidien et petits plaisirs à partager. Tout vous attend chez Winners. Vivez pleinement la saison avec encore plus de choix et toujours plus d'économies. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
5: On est tous Winners.
6: Copy spicy, copy sweet. Music lovers, key heartbeat.
7: Tak, tak, Bollywood.

0: l'auto-défi de Long Shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, कौन खुश रहना नहीं चाहता, किसको खुशी नहीं चाहिए। खुशियां कभी किसी के पीछे भागने से नहीं मिलती। जब आप धैर्य रखते हो, खुद पर विश्वास बनाए रखते हो और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हो, तब खुशियां अपना रास्ता खुद बनकर आपकी ज़िंदगी में आना शुरू कर देते हैं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती हैं, उसी तरह हर मुश्किल दौर के बाद खुशियां भी आपको ढूंढते हुए आप तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। बस हिम्मत मत हारना और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें इसलिए इंतज़ार करवाती है क्योंकि वो तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर खुशियां तैयार कर रखी हुई हैं, जितनी आप सोचते हो शायद उससे कई ज़्यादा। खुशियां रास्ता नहीं भूलती, अगर दिल में उम्मीद जिंदा हो तो हौसला साथ हो, वो आप तक ज़रूर पहुंच जाती हैं। तो खुद पर भरोसा रखो, जो खुशियां आज आपसे दूर हैं कल वही आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन सकती हैं। और याद रखना, ये जो हम खुशी की बात करते हैं, ये कोई चीज़ नहीं होती है कि आप गए, आपने ख़रीद लिया या आपने चुरा लिया। खुशियां एहसास होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। कभी किसी से दो मीठे बोल बोल कर, कभी किसी को एक जोक सुना कर, कभी किसी के साथ किसी का टिफिन शेयर करके, कभी किसी के साथ गले लग कर, किसी को झाड़ू की झप्पी देकर,

0: या बस किसी के आंसू पोंछ कर उनको हंसाना, ये होती है खुशियां। खुशियां चीज नहीं होती, फीलिंग्स होती है, याद रखना।
1: Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift, ton premier pas qui capable sens tout aujourd'hui, il y a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait un

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चिली जी के साथ एक बार फिर टाइम हो गया है कि हम आपके लिए लेकर आए गेम, और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको क्या मिलेगा ये भी तो जानना जरूरी है. ओके, सो यहाँ पर हम खेल रहे हैं आपके साथ, एंड एमबीसी के साथ खेलने पर आपको मिलेगा मौका टू विन वन टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे 25 जुलाई 7:30 बजे ये होने वाला

है SBICC पाई में। अब ये टिकट किसको मिल सकता है? उन्हीं को मिलेगा ना जो मेरे सवाल का जवाब देगा, मेरे सवालों का। आगे बोल बेटा। हाँ, तो यहाँ आपके लिए मैं सवाल लेकर आई हूँ। आपको मुझे बताना है कि बीबी नंबर वन का कौन सा गाना है। जी हाँ, बीबी नंबर वन का, अभिजीत जी के गाए हुए बीबी नंबर वन का वो कौन सा गाना है जिसको रिक्रिएट किया गया है और एक दूसरे फिल्म में उसको यूज़ किया गया है। वो फिल्म का नाम आपको मुझे बताना है, बीवी नंबर वन का वो कौन सा गाना है जो वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फिल्म में यूज़ किया गया है, जो कि ओरिजिनली ऑफ कोर्स अभिजीत की आवाज़ में है। और वैसे अनु मलिक रिटेन्स द ओरिजिनल कंपोजिशन विद द न्यू अरेंजमेंट, और अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में वो गाना है। आपको मुझे बताना है वरुण धवन, पूजा हेगड़े की वो कौन सी मूवी है, वो गाना कौन सा है जिसको फिर से इस फिल्म में लेकर आया गया है। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए और जीत जाइए ये टिकट।

वैसे इनको मैंने देखा नहीं लेकिन जान गए कि यहाँ पर जो सवाल हमने किया था बीबी नंबर 1 का कौन सा गाना है एंड कौन सी मूवी जिसको रिक्रिएट किया गया है, द मूवी जिसमें वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आए हैं, एंड सही जवाब है ये, है जवानी तो इश्क होना है।

0: विनर कौन है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर विनर है रागिनी गोवर्धन, आप रहते हैं पुदोदो, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको मिल रहा है एमबीसी के साथ खेलने पर एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है 25 जुलाई को रात 7:30 बजे SBICC पाई में। तो यहाँ पर यू गोइंग टू स्टेप इन टू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, यहाँ पर आप वो लम्हे जीने वाले हैं जो बॉलीवुड का गोल्डन ईरा माना गया है। आप इंजॉय करेंगे यहाँ के टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स और प्योर म्यूजिकल मैजिक। टिकट खरीदना चाहते हैं mochike.mu/agizotayo पर ये टिकट्स अवेलेबल है जो स्टार्ट करते हैं आज फ्रॉम 850 rupees। डोंट मिस इट। रिजर्वेशन के लिए कॉल द हॉटलाइन 4669999। चलिए इसी के साथ थोड़ी देर में मिलने जा रहे हैं हम अरविंद के साथ, हमारा वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन के साथ हाजिर हो रहे हैं वो। मॉर्निंग
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: ने वर्ल्ड कप देखा और अगर नहीं देख पाया तो अरविंद आते हैं ना अपनी मैगजीन के साथ.
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
2: रेडियो मस्ती की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
0: अरविंद थक गए मुझे पूछते पूछते विदिता फ्रांस या स्पेन, फ्रांस या स्पेन. मेरे पास का सब सवाल का जवाब नहीं है अरविंद. सो चलिए एक बार फिर अरविंद का वेलकम करते हैं, देखते हैं अभी शुरू हो रहा है ना हमारा बिल्कुल हमारे जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं वेट कर रहे हैं. अरविंद अरविंद
4: It's the final countdown. आज एक टिकट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जाने के लिए मिलेगा. कौन लेगा, फ्रांस या स्पेन, ये 11 बजे के बाद ही पता चलेगा. टेक्सास के डालास स्टेडियम में

0: It's a massive FIFA World Cup semi-final blockbuster. France versus Spain, यूरोप के दो महारथी टू फुटबॉल जायंट्स टकराएंगे। फ्रांस के लिब्लू अभी तक सांफोत सब को हरा के नॉकआउट राउंड में आए, यहां एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, जानलेवा अटैकिंग लाइनअप है। स्पेन में टेक्निकल मास्टरी, हैवी बॉल रिटेंशन, रोड्री और लामिन यमाल की क्रिएटिविटी से किसी भी सिचुएशन को अनलॉक किया जा सकता है। फ्रांस की टीम लगातार तीसरे वर्ल्ड कप फाइनल में जाने के लिए सज है। नॉकआउट राउंड में स्वीडन, पाराग्वे और मोरक्को को एलिमिनेट किया। फ्रांस का पॉसिबल लाइनअप, माइक माइग्नन गोलकीपर, जुल कुंडे, विलियम सालीबा, डायो उपामेकानो और टियो एनांडेस डिफेंस में, मिडफील्ड में राबियो और चुआमेनी, फिर अटैकिंग मिडफील्ड में डेम्बेले, डुए और ओलिजे, अटैक में किलियान एम्बापे। स्पेन में गोलकीपर उनई साइमन, जिसने इस वर्ल्ड कप में केवल एक गोल कंसीड किया है, डिफेंडर पेड्रो पोहो, पोल कुबासी, आयमिक लापोते, मार्क कुकुरेला, मिडफील्ड में रोड्री और फाबियन रुइज, अटैकिंग मिडफील्ड में लामिन यमाल, दानी ओल्मो, एलेक्स बायना और स्ट्राइकर मिकेल ओयोजाबाल। फ्रांस का किलियान एम्बापे 8 गोल स्कोर कर चुका है, गोल्डन बूट रेस में मेसी के बराबर है। मैच एक फैसिनेटिंग टैक्टिकल कंट्रास्ट वाला होगा। स्पेन मैच कंट्रोल करना चाहेगा, शॉर्ट पासिंग, मिडफील्ड में कंट्रोल। फ्रांस का अटैकिंग लाइनअप भी जानलेवा है, रैपिड काउंटर अटैक, एम्बापे और डेम्बेले तेज रफ्तार से वार कर सकते हैं। फ्रांस के बॉस जीजे देशों ने कहा कि ये एक स्पेक्टाकुलर सेमीफाइनल होगा। इन दो टीमों के बीच यूरो 2024 में स्पेन ने फ्रांस को सेमीफाइनल में हराया था 2-1 से, फिर पिछले साल नेशंस लीग में भी स्पेन की जीत हुई थी। देशों ने कहा, द पास्ट इज द पास्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, हमारी टीम एक अलग लेवल में खेल रही है, हम लोग फाइनल में जाना चाहते हैं हर हालत में। देशों खिलाड़ी था, कप्तान था, जब फ्रांस 1998 में वर्ल्ड कप जीता था, 10 साल बाद मैनेजर बनकर चैंपियन बना, 2022 में फाइनल में गया। जीजे देशों कह रहा है स्पेन फेवरेट है। स्पेन के मैनेजर दिला फुएंते ने जवाब दिया, फ्रांस फेवरेट है, कोई अपनी टीम पर दबाव प्रेशर नहीं डालना चाहता। पर स्पेन के फैंस और फ्रांस के फैंस जो मॉरिशस में बहुत हैं, उन पर दबाव होगा जरूर। नो टेंशन, क्योंकि ये मैच एमबीसी टीवी के स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर लाइव आप लोग देख पाएंगे आज रात। सो कौन जाएगा फाइनल में, स्पेन या फ्रांस, जवाब आज रात। इट्स द फाइनल काउंटडाउन, बी रेडी फॉर द फाइनल।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: problem li kien li pagit li li. Anchor Life, your heart, act now.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
3: अनीस दोस्तों, एक और गेम के साथ हम आ गए हैं एंड यहाँ पर हम आपसे करेंगे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल जिसमें आपको यस और नो में जवाब देना होगा. इज इट ट्रू और फॉल्स. तो एंकर लाइव की तरफ से आपके लिए गेम लेकर आए हैं हम. सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है एंकर लाइव गुडी बैग वर्थ 500 रुपीज, जिसमें आपको एंकर लाइव 750 ग्राम्स, एंकर लाइव 300 ग्राम्स और एक कप भी मिल सकता है. तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आप मुझे ये बताइए, डज ओमेगा 3 सपोर्ट good cardiovascular health? Does omega 3 supports good cardiovascular health? आपको मुझे सही जवाब देना है yes or no में on 549 and 1294.

0: good beat for your morning show. From RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, चलिए इसी के साथ यहाँ पर हमने सवाल किया था उसका जवाब हमें मिल चुका है और हमारा सवाल बहुत आसान था और आपको बस थोड़ा सा अपने शरीर पे ध्यान देना है अपने बॉडी पे ध्यान देना है अपने दिल का ख्याल रखना है जैसे कि हमेशा इनका लाइफ का लोगों कहता है कि अपने दिल का ख्याल रखो टेक केयर ऑफ योर हार्ट राइट तो हमारा सवाल था डज ओमेगा 3 सपोर्ट्स गुड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड द राइट आंसर इज यस एक्चुअली में ये आपकी ये जो एनका लाइफ में जो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है ये आपके सपोर्ट करता है गुड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और आपको ये भी बता दें कि आपको अपने दिल का ख्याल रखना है बिफोर इट रिमांड्स यू टू स्लो डाउन ओके तो आपको स्टार्ट करना है आज ही यू हैव टू स्टे एक्टिव यू हैव टू ईट बैलेंस्ड मील्स एंड मेक एनकल लाइफ योर डेली पार्टनर इन केयरिंग फॉर योर हार्ट और हाँ इफ़ यू हैव एनी हेल्थ कंसर्न्स प्लीज स्पीक टू योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर एडवाइस ठीक है एनकल लाइफ योर हार्ट एक्ट नाउ ओके तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है सही जवाब देकर विनर कौन बना है ये जान देखते हैं कौन है तो यहाँ पर सही जवाब देखकर विनर बने हैं कालबास से अजय कंग्रेचुलेशंस आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और मैं आपको बता दूं कि एमबीसी के साथ खेलने पर यहाँ पर आपने एनका लाइफ के साथ खेला है तो आपको मिल रहा है गुडी बैग वर्थ 500 रुपीज़ जिसमें आपके लिए एक एनका लाइफ कप भी है यहाँ पर बॉक्स ऑफ एनका लाइफ 750 ग्राम्स एंड अ बॉक्स ऑफ एनका लाइफ 300 ग्राम्स तो कंग्रेचुलेशंस आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट ओके चलिए तो इसी के साथ मैं कहूँगी बाकी जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट थैंक यू सो मच एंड आपको अजय एमबीसी आना होगा अपने आईडी कार्ड के साथ टू कलेक्ट योर गुडी बैग भूलिएगा नहीं सुबह 9:30 से सुबह के 3:30 के बीच अपने आईडी कार्ड के साथ
3: प्रॉब्लम लेके ली बागेट ले ली ली कैपाव मोआ ली कैपाव टोआ ली कैपाव नू टू प्रोटेज टू लेके जोडी पो की डिमे टू पा आ रिस्क गेन बान प्रॉब्लम लेके Allô, enjoy your life avec Enke Life parce qu'il ça bondit les Enke Life là et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te bonne activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit les Enke Life, fais là, te prends soin de l'équerre. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
0: Morning Beat.
1: RM2 Radio Musti in the mix.
2: चलो भाई इसी के साथ अब हमारे जाने का टाइम हो गया है थैंक यू सो मच गाइज अब मॉर्निंग कल सुबह 7 बजे मिलते हैं ख्याल रखिएगा अपना बाय बाय टेक केयर

0: खबरों को लेकर आशिता आ चुकी है। आशिता आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सुमी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बास्टिल किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कई समझौतों और पहलों के माध्यम से संचालित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र शामिल हैं। पिछले वर्ष फ्रांस मॉरिशस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक और 5वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। और आज मंगलवार सुबह 11:30 राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जाएगा। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूट केस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या जैसे मुद्दे शामिल हैं। मॉरिशस की संसद में आज मंगलवार के सत्र के दौरान ही विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे, जिनमें जल आपूर्ति की सुरक्षा, अवैध पानी कनेक्शन, SSO अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो एक्सप्रेस के संभावित विस्तार, सामी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के लिए मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना जैसे विषय शामिल है। और आपको हम याद दिला देते हैं कि आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जो सुर्खियों में है वो है अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार होर्मुज जलमार्ग में ईरान द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने और कुछ जहाज़ों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अमरीका ने हवाई हमलों और समुद्री ड्रोन अभियानों की नई श्रृंखला शुरू की है। वहीं दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने कल सोमवार को होर्मुज जलमार्ग में 2 तेल टैंकरों पर हुए हमले के लिए ईरान पर बेहद दुस्साहिक हमला करने का आरोप लगाया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका होर्मुज जलमार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। और अंत में हम आपको याद दिला देते हैं कि इस फ्लैश न्यूज़ के बाद यहाँ पर आपके लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा आज की चर्चा। और इस के अंतर्गत आज अंतर्राष्ट्रीय उम्मीद दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ होप पर चर्चा केंद्रित रहेंगी। और आज जो मुख्य मेहमान हैं वो है नीरज और हर्षा और प्रस्तुतकर्ता हैं सुमी सरकार। सो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, 14th of July, ladies and gentlemen. आप सभी का स्वागत. 9:10 और आज है मंगलवार. हमेशा की तरह बिल्कुल तैयार. To get you started for the day. और जितने लोग अभी ट्रैफिक से निकलकर अपने काम पर पहुंचे हो जी, मैं कह रहा हूँ कमाल के अचीवमेंट. मॉर्निंग में कमाल कर दिया. नहीं, अच्छी बात है. वैसे जहाँ भी जाते हैं साथ में बहुत सारा ट्रैफिक लेके जाते हैं, थॉट्स का, इरादों का, यादों का. इन सब से निकलना है और फिर ट्रैफिक से भी. हाँ, ये सच है कि आज हर कोई बात कर रहा है अबाउट द सेमीफाइनल्स. आज एक अलग ही स्टेज पहुँचने वाला है. सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी MBC रेडियो, MBC टीवी पर, नॉट टू फॉरगेट लाइव. और वहीं पर हम बात करें अगर बॉलीवुड की दुनिया की, तो बहुत सारी हलचल हो रही है बिकॉज वीकेंड में जो मूवीज रिलीज हुई उसकी कितनी हुई बॉक्स ऑफिस कमाई नहीं पता मेरे भाई, तो बताता हूँ थोड़ी देर में. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, कंटिन्यू टिल 12 PM.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

इराज में पहुंच जाते हैं ना, अमेजिंग सॉन्ग्स, अमेजिंग टाइम्स। जितने भी लोग हैं अभी काम पर हैं एंड रिलैक्सिंग म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, दिस वन्स फॉर यू।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: जैसा वक्त हो गया आपकी राशि के बारे में जानने का और शुरुआत करते हैं विद

मेष राशि आज के लिए आपके एनर्जी फुल ऑन रहने वाली है। ऑफिस हो या बिजनेस, उसमें नए आइडियाज सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। बस जल्दबाजी से बचिएगा और डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। शाम के टाइम फैमिली और

0: right.
1: Gemini, Mithun Rashi.
2: जेमिनी आज आपकी बातों का मैजिक चलने वाला है. मीटिंग्स हो या मस्ती, हर जगह आप ही की चर्चा होने वाली है. एक नया मौका भी सामने आ सकता है. बस ये सोचिए कि आगे चलकर कितना फ्रूट दे सकता है, कितना फ्रूटफुल हो सकता है. बस प्रॉमिसेस सोच समझ कर कीजिए. बोलो प्यार से, मिलो गले लगा के.
1: कैंसर कर्क राशि.
2: इमोशंस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बो आज आपके फेवर में रहने वाला है. घर और ऑफिस दोनों जगह अप्रिसिएशन मिल सकती है. हाँ, लेकिन हेल्थ पर भी ध्यान देना बाकी होगा. हाइड्रेट रखिए अपने आप को, स्माइल करते रहिए, यह आपकी बेस्ट एक्सेसरी हो सकती है. खुश रहो यार, जीतो हर बार.
1: लियो सिंह राशि.
2: लियो, समय रहते अपना वक्त पर काम खत्म कर दियो. स्पॉटलाइट आज आपके नाम पर रहने वाली है. लीडरशिप से लोग इंप्रेस होंगे और नए आइडियाज की तरफ आपकी नजरें दौड़ेंगी फटाफट. टीम वर्क पर फोकस रखिए. सक्सेस और भी बड़ी हो सकती है. कॉन्फिडेंस आपकी पहचान हो सकती है. दिल से लीड, सक्सेस मिलेगी इंडीड.
1: वर्गो कन्या राशि.
2: भाई प्लानिंग आज आपका विनिंग फॉर्मूला बन सकता है. पेंडिंग काम कंप्लीट होंगे और प्रोडक्टिविटी हाई रहने वाली है. ओवरथिंकिंग को थोड़ा ब्रेक दीजिए. इतना सोचते क्यों, स्ट्रेस इतना सारा. ओ नो, मतलब इसे दूर रहिए साहब. खुद पर भरोसा रखिए, रिलैक्स भी करना जरूरी है. प्लान बनाओ, आगे बढ़ जाओ.
1: लिब्रा तुला राशि.
2: लिब्रा, आपके लिए जो बैलेंस है ना, वो बनाकर रखना बहुत जरूरी है. हर सिचुएशन को स्माइल के साथ हैंडल कर सकते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. रिलेशनशिप में वार्मथ बढ़ने वाली है और सेल्फ केयर का भी मूड बनेगा. पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है. स्माइल दिखाओ, खुशियां पाओ.
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
2: भाई कॉन्फिडेंस के साथ हर चैलेंज को फेस कीजिएगा. आज आपकी स्मार्ट थिंकिंग काफी काम आने वाली है. हर सिचुएशन में सोल्यूशन ढूंढना फटाफट, ये आपके ऊपर. वैसे आपके प्लान्स को वक्त आने तक सीक्रेट ही रखिए. उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं. शाम को पीसफुल अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ. सोचो डीप और लो एक लंबी छलांग, यानी कि लीप.
1: सजिटेरियस धनुराशि.
2: एडवेंचर और एक्साइटमेंट दोनों का आज आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपको मौके मिलेंगे. कुछ नया सीखने का मौका भी मिल सकता है. हंसी मजाक से दिन और भी कलरफुल बनेगा. दिल खोल कर एंजॉय कीजिए, सपने सजाओ, दुनिया घूम के आओ.
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
2: भाई आज हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. सीनियर्स आपकी मेहनत नोटिस कर सकते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी दिन अच्छा है. अगर आप पहले से कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में सीरियसली अब सोचना, काम करना अच्छा मौका है. कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, मेहनत दिखाओ, जीत करके कप घर लाओ.
1: एक्वेरियस कुंभ राशि.
2: भाई क्रिएटिव आइडियाज आज आपकी पहचान बन सकते हैं. फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी. अपनी ओरिजिनलिटी पर भरोसा रखिए. हाँ, आप यूनिक हैं, जहाँ पर हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं. गुड न्यूज मिलने के भी योग बन रहे हैं. नया सोचो, आगे पहुंचो.
1: पाइसेस मीन राशि.
2: पाइसेस आज इंट्यूशन आपका बेस्ट गाइड रहने वाला है. क्रिएटिव काम और हॉबीज में दिल लगाइए. किसी अपने के अच्छे होने की प्रार्थना कीजिए. अगर आसपास कोई ऐसा है जो हाँ ऐसा, पॉजिटिव सोचिए और मुस्कुराते रहिए. दिल से जियो और आगे अपने कदम रख दियो.
3: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग कहते हैं अगला गाना टू अब्दुल इंसान अबानो. जी हाँ जरूर, वहीं पर कमल आ गए हैं, साथ दे रहे हैं हमारा. गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल. और यहाँ पर है मृतिका. राइट, आपका भी स्वागत. और कहते हैं प्लीज अगला गाना गोज आउट स्पेशली टू प्रश्नी जो वहाँ साथ दे रही. माया आपको भी है वेरी गुड मॉर्निंग. और माया कहते हैं कि कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है और सुबह उठकर वो फीलिंग होती है कि अब दिन कैसा कटने वाला है. वैसे अगर हम खुशियों की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, तो आज का लाइफस्टाइल मंत्र कुछ ऐसा है कि स्लो डाउन, स्ट्रेस होना चाहिए बिल्कुल डाउन. भाई हम सब अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए सिर्फ 10 मिनट निकालना इतना मुश्किल लगता है. लेकिन याद रखिए, एक छोटा सा ब्रेक आपके एनर्जी और मूड को कम्प्लीटली रीसेट कर सकता है. हाँ, उतना जैसे अप्लायंसेज में एक रीसेट बटन, वही बिल्कुल वैसा ही. बस आज आपको एक प्रॉमिस करना होगा. नहीं सच में, हाँ, लंच बिना फोन के एंजॉय कीजिए, थोड़ी फ्रेश हवा में वॉक कीजिए या अपना फेवरेट गाना सुनकर बस मूड में आ जाइए. खाली 2 मिनट के लिए स्माइल. छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स हैं, बड़ी हैप्पीनेस का राज होती है. अगर आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अपने फेवरेट इंसान के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, तो लगता है जैसे कुछ अलग बात की, काम से अलग, जिंदगी के बारे में, अपनों के बारे में, और फिर मूड एकदम से चेंज. और हाँ, पानी पीना मत भूलना, क्योंकि हाँ अगर हम बात सोचें कि आप पूरे दिन की भागा दौड़ी करते हैं लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, तो फिर अच्छी बात नहीं. अच्छी जो पोस्चर है उसको मेंटेन कीजिए और किसी से एक प्यारी सी स्माइल के साथ बात कीजिए. कभी कभी आपकी स्माइल किसी और का दिन बना सकती है. तो कम स्ट्रेस लो, ज़्यादा स्माइल दो, हर दिन को हैप्पी एक स्टाइल दो.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio.

0: चलिए आप सुनते आ रहे रेडियो पर वन डे आजे, तो आपको ये मौका मिलता है कि यहाँ पर आकर स्टूडियो में एक दिन के लिए आजे, ये जो वक्त है ना इसको जरूर बताएं। It's gonna be an experience in its own। चलिए साहब इसके बारे में कुछ और हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप सारी डिटेल सुनकर अपने फुल ऑन मूड और स्टाइल के अंदर जरूर अपने वीडियोज भेजें 5251-6363 पर।
1: कभी सोचा है
0: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आजे,
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Tuesday, 14th of July, time check, exactly 10 a.m. मिलते हैं आशिता से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। आज फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और उत्सवों से आगे बढ़कर फ्रांस आज भी अनेक मोर्शनों के लिए अवसरों की धरती बना हुआ है। पढ़ाई, करियर या विवाह के बाद फ्रांस का रुख करने वाले कई मोर्शन आज वहाँ अपनी नई पहचान और जीवन शैली बना चुके हैं। इसके बावजूद उनका अपनी मातृभूमि मॉरिशस से गहरा भावनात्मक जुड़ाव आज भी बरकरार है। उनकी जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि फ्रांस ने उन्हें रेस्टोरेंट, व्यवसाय, संस्कृति, मीडिया और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने और नई संभावनाओं को साकार करने का अवसर दिया है। मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा के बारे में बात करें, आज मंगलवार सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय

0: सभा के कार्य शुरू हो रहे हैं पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किए जाएंगे। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूट केस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके दौरान सांसद अरविंद बाबाजी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच से जुड़ा सवाल उठाकर सत्र की शुरुआत करेंगे। और मॉरिशस की संसद में आज मंगलवार के सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों से लगभग 50 सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता देते हैं कि सांसद जोआना बेरांजे ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन से सरकार की जल सुरक्षा रणनीति के बारे में जानकारी मांगेंगी। वह ये जानना चाहेंगी कि क्या समुद्री जल के डिसलाइनाइजेशन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर जल वितरण नेटवर्क में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसी सत्र से जुड़े एक अन्य सवाल में मंत्री से जनवरी 2025 से अब तक सामने आए अवैध पानी कनेक्शनों की जानकारी मांगी जाएगी। सांसद कुशल लुबिन और अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई और वसूले गए जुर्माने से प्राप्त आय का विवरण जानना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सरकार महिला आरक्षण की समय सीमा को वर्ष 2029 तक आगे बढ़ाने से संबंधित नए संविधान संशोधन विधेयक के साथ साथ लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए डिलिमिटेशन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। ये दोनों विधेयक अप्रैल में आयोजित विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पारित नहीं हो सकते के थे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार सरकार आगामी मानसून सत्र में ये संविधान संशोधन विधेयक तभी पेश करेगी जब उसे इसके पारित होने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत का पूरा भरोसा होगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे अभी शोक समाचार। रायरुर पुत्रदो विलाज में 82 साल के 82 years old के श्री मोहनलाल दीनू जिन्हें मोहनलाल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी चंद्रिका दीनू के घर पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे बहुत कमाल होने वाला है, हर कोई बात करे। वैसे जहाँ भी जाओ अपने दोस्तों से बात करो, कलीग से बात करो, हर कोई मार्च कर रहा है कि भाई फ्रांस और स्पेन के बीच में बहुत कमाल की कहानी होने वाली है। फ्रांस की बात करें तो बहुत ही एक्सप्लोसिव अटैक है, डिफेंस बहुत बढ़िया है और बड़े बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस है, काउंटर अटैक्स पर बहुत डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन किसी का भी कहना है कि अगर स्पेन ने डोमिनेट किया पोजेशन तो फ्रांस फिर लंबे पीरियड डिफेंडिंग में बिता देगा। और अगर स्पेन की बात करें तो एक्सेलेंट बॉल पोजेशन तो है ही, लेकिन वहीं पर बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड्स भी हैं, पेशेंट बिल्डअप और वहीं पर स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है उनका अगेंस्ट फ्रांस इन मेजर कॉम्पिटिशंस। अब देखते हैं क्या कमाल होता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो वनरेबल हैं जब क्विक काउंटर अटैक्स होते हैं, या फिर अगर वो पीछे रह जाएं तो फिर ओपन अप हो जाते हैं या स्पेस छूट जाता है। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि बहुत ही टाइट हाई क्वालिटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। हाँ, लेकिन फ्रांस फेवरेट लगा हुआ है, अभी लोग यही कह रहे हैं। बस आज रात को चमत्कार होने वाले हैं। वहीं पर एम्बापे गोल्डन बूट के लिए जरूर भागेगा, दौड़ेगा, गोल मारेगा, लेकिन बाकी थोड़ी देखते रहेंगे कि देखते हैं क्या होता है। स्पेन कितना देगा पेन, कहीं गानों होगी गोलों की रेन, क्या कमाल होगा, चलिए आपको बताएंगे जरूर। वहीं पर एमबीसी प्ले और एमबीसी रेडियो और टीवी के साथ भी जुड़े रहें। ये तो स्पोर्ट्स की बात होगी, लेकिन अभी प्रोग्राम की बात है। एक बार फिर से हम और आप साथ, 10:09 14 जुलाई ट्यूजडे का दिन। हालचाल ठीक है, क्या हो रहा है? मौसम की बात करें तो काफी हमारे क्लीग्स हैं जो कर रहे हैं, हाँ कहीं आपका भी तो ऐसी स्टाइल नहीं, तो बस गर्म पानी, अपने आप को हाइड्रेट रखना, खबर अप रखना, उसके बाद म्यूजिक थेरेपी तो ऑन ही है।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Well, ladies and gentlemen, वैसे कहते हैं कि हम धरती पर अकेले आते हैं, लेकिन उसके बाद रिश्ते बनते चले जाते हैं, और फिर जब रिश्तों में वो प्यार का पानी या सिंचाई नहीं होती तो उसका पता चलता है नहीं, बदलता व्यवहार। वैसे तो बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो डिस्टेंस है ना, जो बीच में फासले, उनको कम करना बहुत ज़रूरी है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर लगता है कि हाँ ऐसे ही सोचता होगा या फिर उसका तो यही कहना है, लेकिन जब तक बात नहीं करें तब तक कैसे सॉल्व होगा। अगर आप रियलाइज करते हैं कि व्यवहार इंसान का थोड़ा सा बदल रहा है तो इट्स अ साइन कि कुछ है जो गलत है। कमिटमेंट से अगर वो बचते हैं या फिर फ्यूचर प्लानिंग से तो पता लगता है कि कोई तो प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे साइंस हैं जहाँ पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। रिश्ते में खुशी से ज़्यादा अगर आपको तनाव है, एंजाइटी है, बेचैनी महसूस होती है, तो हर एक्शन पर आप ओवरथिंक कर रहे हैं, तो ये भी एक साइन है। वो लगता है कि जैसे सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है। यू कैनॉट डिपेंड ऑन द पर्सन। हर बार कॉल, मैसेज या मिलने की पहली आप कोशिश करते हैं, दूसरा बस सोचता ही रहता है, ये भी एक साइन है। You need to again sparkle some magic in your relationships. यानी कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट उसमें डालिए भाई, कोशिश कीजिए कि कोई प्लान्स बनाइए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, या फिर अगर दोनों काम करते हैं तो बीच में एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक, आज कॉफ़ी के लिए मिले थोड़ी देर के लिए। वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लेकर आ सकती हैं। आपने कोशिश की नहीं, मैं क्यों, अगर ये आ गया ना तो फिर बड़ा प्रॉब्लम। इसको कहते हैं ईगो, भाई इसके अंदर ही गो है, लेट इट गो। इसलिए छोटे छोटे वादे कीजिए और अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि यू ऑलरेडी हेल्ड योर हैंड्स इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ एज हस्बैंड एंड वाइफ।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: 2.
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: चलिए आप फैशन की बात करते हैं और वहीं पर काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को देखना चाहते हैं एक एज अ प्रोफेशनल. बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे में हो सकता है कि आप एक पैंट जो कि वुलन पैंट हो उसको सिलेक्ट करें. नाउ ग्रे इज रियली इन फैशन एट द मोमेंट, क्योंकि ग्रे के ऊपर पर्पल हो या फिर इवन ब्लू बहुत कमाल का चलता है. लेकिन काफ़ी लोग चाहते हैं कि एक ऑफिस लुक के लिए, एक तो पहले आपको जो जूते होने चाहिए काफ़ी शाइनी होने चाहिए, बिल्कुल पॉलिश नाइस एंड गुड. और वहीं पर कहते हैं पहली चीज़ वही होती है जो जूते, हाँ, जिसको लोग नोटिस करते हैं. तो आपके साथ सोचिए एक ग्रे पैंट एंड चमकते हुए काले शूज़ एंड नाइसली डन अप. और उसके साथ साथ आप एक शर्ट जो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट कलर का हो, यानी कि ब्लू हो या वाइट हो, इवन येलो फॉर दैट मैटर, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट. लेकिन उसके ऊपर एक कार्डिगन जिसमें निटेड एम्ब्रॉयडरी हो, या फिर होता ना कि टर्टल नेक्स भी आते हैं और जिसके अंदर एक कंट्रास्ट लाइनिंग होती है, हाँ, कुछ ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं. एक मफलर, व्हाई नॉट. अच्छा, आजकल जो मौसम हो रहा है कि बादल हैं, एकदम से धूप आ जाती है, सो यू नीड टू कीप लेयर्ड, यानी कि आपको जब मन करा उसको निकाल भी लें, आपका हेयर स्टाइल भी ख़राब ना हो. इसलिए टर्टल नेक जो होते हैं ना, उसकी लंबी जिप होती है जो कि चेस्ट तक आती है, एंड यू कैन ऑलवेज ओपन एंड टेक इट आउट, या फिर एक डेनिम जैकेट या कॉटन जैकेट भी रख सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रास्ट रखना. और वहीं पर एक कमाल की फैशन एक्सेसरी जैसे कि एक वॉच डाल सकते हैं. अब स्ट्रैप्स अलग अलग, चाहे आप एक लेदर स्ट्रैप डालते हैं ब्राउन कलर का, गोइंग नाइसली विद योर कार्डिगन जो एक ऑफिस लुक लेकर आती है, या फिर इसको फैंसी बना सकते हैं. आजकल आपको पता है कि सडनली रेड घड़ियां या फिर एक डिफरेंट का कलर्ड आपका हैंड बैग, कुछ भी ऐसा कुछ, दैट्स गोना वर्क रियली फाइन. नेक्स्ट टाइम आप सोचें थोड़ा मूड और मौसम के हिसाब से एंड गिव दैट

0: परफेक्ट लुक। चलिए अभी के लिए करते हैं अगले गाने को बुक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरे फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।
0: मौसम भी ठंडा ठंडा कूल कूल।

0: एमबीसी रेडियो, एमबीसी टीवी, और मौका मिला कुछ बड़े बड़े स्टारों से मिलने का। उनकी जादुई आवाज़ और हमारी ज़िंदगी में कब कौन सा गाना हिस्सा बन जाए, कमाल है ना। वो सुकून देता हुआ, प्यार से हाथ थाम कर कहता हुआ, मैं हूँ हम सफ़र, चाहे चलो कोई भी सफ़र, 24/7 आपके साथ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आ रहे हैं। मैं यही हूँ बस थोड़ी देर में, जिसमें कहा आने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड,
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अच्छा मूवीज बहुत सारी आती है, लेकिन एक मूवी थी जो बहुत कमाल की चली, माय गॉड क्या उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स, और चतुर ने तो कमाल कर दिया था, इतनी चतुराई से कमाल कर दिया था। अच्छा कहते हैं कि फुंसुक वांगड़ू, वो जो कैरेक्टर ना फुंसुक वांगड़ू को मरते नहीं देख सकता। थ्री इडियट्स के चतुर को सोनम वांगचुक की चिंता, एक्चुअली उन्होंने किया सीना ठोकर सपोर्ट। बात करें तो हम जानते हैं चतुर को, और चतुर का एक डायलॉग था जो पूरी क्लास के सामने एक बड़े ऑडिटोरियम में वो संस्कृत में समझाते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता था वो क्या कह रहे हैं। नहीं, काफ़ी पॉपुलर रहा। अब हम बात कर रहे हैं जब फुंसुक वांगड़ू की, तो असली इंसान है जो वहाँ पर है, एंड ले के अंदर ऐसी शूटिंग की गई थी। एंड जब इनको लिया गया, जब इनको ऑडिशन के लिए बुलाया गया था चतुर को, तो उनकी जो एक्सेंट थी, ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे, और फाइनली रियलाइज ये हुआ कि ये तो ओमी वैद है। राइट, कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि फुंसुक वांगड़ू मर जाए, मैं थ्री इडियट्स का वही चतुर हूँ, और आज एक ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ उनके लिए। वैसे हमने देखा है कि एक्टर्स जब सपोर्ट में उतरते हैं तो फिर उसका मैसेज दूर तक ही जाता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोशल कॉज, तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जब इतने पॉपुलर लोग हैं तो उनको अपनी स्टारडम का पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए टू ब्रिंग ऑन अ सोशल मैसेज, अ पॉजिटिव मैसेज। और अब सुनने में आया कि थ्री इडियट्स पार्ट टू आएगी, देखते हैं क्या होता है वहीं पर, अंदाज अपना अपना, पार्ट टू इसकी बात हो रही है। चलिए थोड़ी देर में बॉलीवुड की कुछ और मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर गोलमाल, कमाल धमाल और साथ साथ में अल्फा गिर गई, तो अब आगे चलकर क्या होगा, चलिए आपको दूंगा डिटेल्स थोड़ी देर में। जब

0: रेडियो मस्ती
1: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपी सेल्स लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री शॉक।

0: चलिए वक्त ने इशारा कर दिया है कि हम बड़े अब संक्षिप्त समाचारों की ओर। 14th of July, Tuesday का दिन, time check exactly 11 AM। मिलते हैं अश्विता से, जानते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले के मौके पर उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया है। पोर्ट लुइस की सड़कों पर मॉरिशस के समर्थकों और पर्यटकों ने इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का पूरे जुनून के साथ आनंद लिया। खुशी, निराशा और जीत को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग रही। कुछ लोगों ने स्पेन की जीत का स्वागत किया है, जबकि कुछ अन्य चाहते हैं कि फ्रांस फाइनल में अपनी जगह बनाए। तो देखेंगे कि फाइनल में जो दो दिग्गज पहुंचेंगे वो कौन सी टीमें होंगी। अन्य खबरों में, मेबग में एक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस दल रॉय रोड मेबग के एक मकान पहुंचा, जहां 47 वर्षीय वासुदेव ओकाराज कमरे में बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े मिले। उनकी सांस नहीं चल रही थी, नाड़ी नहीं थी और शरीर ठंडा पड़ चुका था। मौके पर CPR का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई सचिदानंद ओकाजा ने आरोप लगाया कि उनके दूसरे भाई अश्विन ओकाजा ने लकड़ी से हमला किया था। सूचना मिलने पर सामूहिक चिकित्सकीय टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बाद में मेबग CID की टीम ने आरोपी अश्विन ओकाजा को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जाँच जारी है। आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बस्ती किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरिशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के

0: बीच द्विपक्षीय संबंध कई समझौतों और पहलों के माध्यम से संचालित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र शामिल है। पिछले वर्ष फ्रांस मॉरिशस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक और पांचवा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। इसके अलावा 200 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां मॉरिशस में स्थापित हैं। वहीं फ्रांस मॉरिशस में आने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत भी है, जहां कुल पर्यटक आगमन उसका हिस्सा लगभग 25% है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्सवैगन ग्रुप समूह ने पुष्टि की है कि वह लागत में कटौती के तहत 1,00,000 तक नौकरियां समाप्त करने की योजना पर विचार कर रही है। ये संख्या पहले घोषित 50,000 नौकरियों की तुलना में दुगनी है। वोल्सवैगन ग्रुप, जिसमें पोर्श, ऑडी, स्कोडा और VW ब्रांड शामिल हैं, ने इससे पहले वर्ष 2030 तक जर्मनी में लगभग 50,000 पद समाप्त करने की योजना की घोषणा की थी। कंपनी को पिछले वर्ष मुनाफे में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। इसकी प्रमुख वजह प्रमुख बाजारों में बिक्री में कमी और यूरोपीय बाजार में चीनी वाहन कंपनियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा बताई जा रही है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड सर्जरिया दुदमोमे, रॉय रोड सर्जरिया दुदमोमे 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आनंदी रामा पैदाशनाम रामा और जिन्हें मीरा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके पति जानू रामा के घर सर्जरिया दुदमोमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉनिमास की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टू 3 PM। रेलवे रोड लॉन्ग माउंटेन में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुलारी जिलाल पैदाश्रम नंदन और जिन्हें बेबी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके पति चंद्रादित्य जिलाल के घर लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्ब शौक की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन 2:30 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: वही गाना बताया कि जिंदगी एक गीत है, इसको जी भर कर गा लो. Sing along and stay every minute with us. क्योंकि यहाँ पर कोशिश रहती है कि आपके लिए हमेशा म्यूजिकल सरप्राइज लेकर आते रहें. स्वागत आप सभी का. It's 9:11 in the morning, 14th of July, Tuesday का दिन. हाल चाल कैसे हैं? My welcome back. और ये है आप ही का.
1: Welcome to RM2.
2: Musty mornings, radio musty.
1: Welcome to RM2.
2: Musty mornings,

0: बहुत सारी बातें हो रही है अबाउट स्पेन और फ्रांस. अरे यहाँ पर भी कोई है जो बात करना चाहते हैं, उनकी फेवरेट टीम है फ्रांस. चलिए देखते हैं क्या कमाल हो रहा है.
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.
0: और जैसे ही मैं कहता हूँ कि आज के मैच के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो जैसे कोई मिलता तो मैं पूछ लेता हूँ कि तुम्हारी फेवरेट टीम कौन. चलिए हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट है, आपका नाम
2: गिरीश.
0: गिरीश, मेरे को बताओ तुम्हारी आज की प्रेडिक्शन की क्या रिपोर्ट है, कौन सी टीम, फ्रांस या स्पेन?
2: फ्रांस.
0: फ्रांस, अरे क्या बात है, लड़का पहले से कर रहा है डांस. क्यों भाई, ऐसी क्या बात है?
2: ऐसी
0: नहीं, मतलब अगर फ्रांस की बात करें तो ठीक है, तगड़ी उनकी रिकॉर्ड रही, उनकी स्पीड, उनका अटैकिंग जो पूरी परफॉर्मेंस है बहुत कमाल की रही, लेकिन स्पेन भी कम नहीं है बड़ी से. हाँ चलिए देखते हैं क्या कमाल करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कमाल की टकरार होने वाली है. और वैसे भी कहते हैं कि ये जब दो टीम्स मिलती हैं तो फायरवर्क्स तो होते ही हैं. फैंस के लिए एक बड़ा बड़ा इनविटेशन होगा, देखते हैं क्या कमाल होगा. लेकिन दिन रात अभी इसी के चर्चे हो रहे हैं.
1: वेलकम टू RM2
3: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: बहुत सारे लोगों ने कहा कि नीरज श्रीधर उनका जो म्यूजिक था वो टाइम से बहुत पहले था, यानी कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड बहुत ही कमाल का है। उनके गाने सुने आपने पहले से ही? वो तो अभी तक गा रहे हैं बहुत अलग स्टाइल में।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज हम कपल्स के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता ना कि एक सिंपल सी रिलेशनशिप, उसके अंदर स्पार्क पैदा करने के लिए बस कोशिश जारी रहनी चाहिए, यानी कि दूसरे की तरफ प्यार मोहब्बत पास आना और ये बताना कि अभी भी मुझको तुमसे प्यार है। वैसे कहते हैं कि आइडिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 2-2-2 का रूल। हाँ, ये क्या है 2-2-2? ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर दो हफ्ते कपल्स सेट असाइड करते हैं इवनिंग खाली उन दोनों के लिए, हर दो महीने में एक वीकेंड गेटअवे और हर दो साल में एक लॉन्गर ट्रिप टुगेदर। अगर कोशिश करें, सेविंग करें और ये सोच लें कि दोनों को एक साथ वक्त बिताना है तो ऐसा पॉसिबल है। भाई, जरूरी नहीं कि आपको एक बहुत ही लाविश वेकेशन पे जाना है, लेकिन एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया जो रिलेशनशिप का, और धीरे धीरे आप सोचें कि नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आप ऐसा करना चाहते हैं और आपने सेट असाइड कर लिए अपने रिसोर्सेज, पैसा हो, टाइम हो, छुट्टियां हो, सब कुछ। एंड कपल्स को बहुत पसंद है इसलिए क्योंकि बहुत अपीलिंग है और बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि बस अब जाने वाले हैं एक छोटे से गेट अवे के लिए। हाँ, हर दो हफ्ते जैसे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री डेट नाइट पर, जहां पर कोई भी स्क्रीन, कोई भी नोटिफिकेशन आपको अलग नहीं कर सकता। हर दो महीने में एक क्विक वीकेंड गेट अवे, या फिर आप नेचर वॉक के लिए चले गए, या फिर अपने फेवरेट स्पेस पे चले गए, कहीं लोकेशन पे चले गए, खाना पीना साथ में है, एक छोटा सा प्लान लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल। हर दो साल में एक प्रॉपर वेकेशन फुली डिस्कनेक्ट करने के लिए अगर आप कोशिश कर पाए तो ये काफी कमाल होगा। राइट, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बजट में या वर्क शेड्यूल में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए, भाई वीकेंड हमने जैसे कहा कि थोड़ा सा कहीं पहुंच गए बीच पर, कहीं दूर अलग, और उसके बाद जरूरी है कि आप दोनों इस पर काम करना चाहते हैं। राइट, थोड़ी और बात करेंगे, आप हमें बताएं कि आपकी साइड पर ऐसे प्लान बनते हैं कि नहीं।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Une thermos de 500 ml à 449,95 € et le kilo de chips Winners, allumettes ou french fries à 109,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
4: On est tous Winners.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जी आपको गुड मैसेजेस एंड थैंक यू सो मच जीना जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ जाने के लिए और जय श्री राम जय पवन पुत्र हनुमान गुड मॉर्निंग आपको भी और बस कोई किसी को याद कर ले ऐसी ब्लेसिंग्स भेजे तो इससे बढ़िया और क्या वहीं पर आ गए आशा जी और कहते हैं कॉटेज से एंजॉइंग द सॉन्ग सिलेक्शन एंड हैव अ ग्रेट ट्यूसडे सभी MBC रेडियो रेडियो मस्ती और मामा कुमारी हैं शुभम ऋषभ दीदी आरती जीजू राज एंड जानू फैमिली के लिए सभी सुनने वालों के लिए राज साहब आपको भी गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच साथ दे रहे हैं हमारा और वहीं पर ज्योति शादो बनारस है अगला गाना रुआशनी रेखा सुरेखा एंड माधव फैमिली के लिए एंड ऑल्सो फॉर द टीम थैंक यू जी थैंक यू वहीं पर प्रिया जी डेडिकेटेड नेक्स्ट सॉन्ग कहती हैं हस्बैंड नितेश के लिए उनके सभी जो पेशेंट्स हैं और आज हॉस्पिटल से हैं और कहते हैं मम्मी के लिए सिस्टर के लिए दो बेटियां हैं एंड बेटों के लिए सभी पूरी फैमिली के लिए भी अच्छा होता नहीं कभी प्लेलिस्ट में ऐसा गाना शुरू होता है शुरू के बाद शामिल हो जाता है फिर लगता है कि अरे गाना काफ़ी टाइम से नहीं सुना कुछ ऐसी आपको भी लगेगा नहीं हर गाने के साथ एक अलग ही कहानी और अभी मेरी मुँह ज़बानी टिल 12 PM कीप ऑन एंजॉयिंग द म्यूजिक अरे कहाँ हो गए गुम मैं तो कहूँगा बस प्यार से यूं ही
3: सुनते रहो

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मंगलवार सुबह 11:30 बजे से राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। पारंपरिक प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम आयोजित किया जा रहा है। इसके दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। आपको हम याद दिला देते हैं कि विपक्ष नेता जूली जोगौद के प्रश्न पर उन्होंने जूली जोगौद प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या वे पेंशन प्रणाली के सिलसिले में आयोजित ट्रेड यूनियनों के प्रदर्शन के बाद क्या वे फाइनेंस बिल को सस्पेंड करेंगे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। इन सवालों में आपको हम याद दिला देती हैं, कार्यसूची में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच, प्लास्टिक बोतलों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, फर्जी पासपोर्ट के मामले, मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां, 114 मिलियन रुपए की रकम वाली सूट केस मामले की जांच और 2014 से 2024 के बीच पूर्व सांसदों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की संख्या जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। रवि राज बिचुक का पिछले 5 वर्षों में मॉरीशस और विदेशों में सामने आए फर्जी पासपोर्ट मामलों का विवरण मांगते हुए इस मुद्दे को उठाएंगे, जबकि विपक्षी सांसद चेतन बाबूलाल प्लास्टिक बोतलों पर लगाए गए 2 रुपए के उत्पाद शुल्क को लेकर सवाल करेंगे और रुबना दोयाओ प्रधानमंत्री से ऑनलाइन नस्लीय घृणा फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सवाल करेंगी। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने पर भी चर्चा करेंगी। आज 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को हुई ऐतिहासिक बास्टिल किले पर कब्जे की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहले कदम के रूप में माना जाता है। मॉरीशस और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध हमेशा से ही गहरे और बहुआयामी रहे हैं। ये संबंध साझा इतिहास की नींव पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। अन्य खबरों में, मेबग में एक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस दल रॉयल रोड मेबग के एक मकान पहुंचा, जहां 37 वर्षीय वासुदेव ओखराज कमरे में बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े मिले। उनकी सांस नहीं चल रही थी, नारी नहीं थी और शरीर ठंडा पड़ चुका था। मौके पर सीपीआर का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें बचा नहीं जा सका। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई सचिदानंद ओकाजा ने आरोप लगाया है कि उनके दूसरे भाई अश्विन ओकाजा ने लकड़ी से हमला किया था। सूचना मिलने पर सामूहिक चिकित्सकीय टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बाद में मेबक सीआईडी की टीम ने आरोपी अश्विन ओकाजा को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

0: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार होर्मुज जलमार्ग में ईरान द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने और कुछ जहाज़ों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अमेरिका ने हवाई हमलों और समुद्री ड्रोन अभियानों की नई श्रृंखला शुरू की है। इसके चलते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका होर्मुज जलमार्ग से जुड़े नए नाकाबंदी उपायों के तहत 20% शुल्क लगाएगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे बढ़ते हम शोक समाचार की ओर। शोक समाचार सुनिए। मर्डीलेन वाकवा में 61 साल की 61 की जैनबी तपसी पैदाश नाम अब्दुल करीम और जिन्हें जैना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 3 बजे इनके शौहर रफीक ममात तपसी के मकान वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए बीगाका का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Testing 1-2. Yeah.
2: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
3: Retro Rhythm
4: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: एग्जैक्टली 12:12 हुए हैं. वेल, रंगत तेरी सूरत की, आहा, व्हाट अ लवली गाना, वो भी लता जी और रफी साहब की आवाज है. विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स. नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. ट्यूजडे आफ्टरनून 14 तारीख, बस व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल वेल ट्यून्ड, एंड ऑफ कोर्स प्यार की खुशबू, खाने की खुशबू. अरे भाई, लंच टाइम है, सो बोना पीछी टू यू वो शुभ आहार. एंड व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल वेल ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती, क्योंकि अभी से लेकर 2 बजे तक 2 घंटों के सुरीले सफर में नहीं तो आपके हम सफर, वो भी म्यूजिकल हम सफर, चनवग्रीन सराबहार नगमे ओनली फॉर यू. जी हाँ, नॉस्टैल्जिया लेन बहुत ही पसंद करती हैं. भले ही कल हम रहे ना रहे, लेकिन ये गाने हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड. ऑफकोर्स गोल्ड इज ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड इज नॉट ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड. सो 5499-1294 पर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. किसी अपनों के नाम पैगाम, किसी का आज बर्थडे है, या फिर किसी के मूड को सेट करना चाहते हैं, कोई गुस्सा है या फिर नाराज है, बस एक प्यारा सा मैसेज, उनके नाम पैगाम नहीं तो काम कर जाएगी, मैं नहीं, ये गाने कर जाएंगे.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: एवरग्रीन सदाबहार गाने जो दिल को छू ही ना ले बल्कि दिमाग पे भी कोई असर तो करता है, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए। यहाँ पर आज विजुअल शातु बेनागस की प्यारी सी हमारी फ्रेंड है ज्योति आशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार एंड नेक्स्ट गाना गुजार टू होम। यहाँ पर हाय नीतू, मैं हूँ बेगम मोहरन फ्रॉम कॉडमास का। हाउ आर यू सिस? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। जिंदगी हर कदम एक जंग, हरी बाप रे बाप, कौन सा गाना आपने मांग लिया, लवली गाना। मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए 5499 1294 पर

साथ अन्य गाने काम कर जाएंगे. सुसंकात नफ नफ दूज नफ कात पर चले नेक्स्ट गाना फ्रॉम द मूवी बॉयफ्रेंड, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी ऑफ कोर्स, लेट शम्मी कपूर पर पिक्चराइज्ड. गीतांजलि, ये वाला वर्षन आपको पसंद है? कौन सा गाना है सुनिए ना.

0: आपका दिल दुखाएंगे? Never.
1: Retro Rhythm.
0: दांस बॉलीवुड और पहले के गानों में यही खासियत होती थी कि हर अदा को हर यानी कि हर इमोशन को जाहिर कर जाते थे गानों के जरिए. 12:31 होने वाली है सुबह. 5499 1294 पर. थैंक यू सो

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: थैंक यू सो मच इन प्यारी प्यारी गीतों की फरमाइश के लिए। 12:42 मुझे कितना प्यार है तुमसे ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नहीं तो रेडियो मस्ती आपसे बहुत प्यार करती हैं। दैट्स ऑफ कोर्स दिल तेरा दीवाना। चाची उषा कैसी बात? सब परिवार के नाम फ्रॉम आमोगी और जितने भी आपके नाती पोते ग्रैंड चिल्ड्रन हैं सब के लिए। एंड यहाँ पर गानों का आप बहुत ही एंजॉय कर रही हैं। थैंक यू कल्याणी फ्रॉम कौतुगल। सोनी नंद आपने भी गाने की फरमाइश की है, चलिए थोड़ी देर में देखते हैं। दिस वन इक्वली गोज आउट टू होम। यहाँ पर है कौन? काव्यांजलि। ओके थैंक यू। आप आज फैमिली गुड आफ्टरनून नमस्कार।

0: हिंदुस्तानी हो या फिर इंग्लिस्तानी, अपना देश तो अपना होता है ना?
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती मस्ती.
0: We are proud to be Mauritian. Thank you so much. यहाँ पर 12:50 मिस्टर बाबू अनतवा, रियली होप आपको ये गाना अच्छा लगा होगा. एंड अभिमान फिल्म का ये सदाबहार गाना, एस डी बर्मन का संगीत, आपके लिए कल्याणी कौतुगल से सह परिवार के नाम.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: 12:56 हो रही है, बस 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. और ये वाला गाना स्पेशली आपके लिए भाई किशोर. जाने कहाँ गए वो दिन तो शायद वापस ना आए, लेकिन आगे देखना चाहिए ना. दैट्स लाइफ. हर पर कोई ना कोई गुल खिलाती रहती है जिंदगी. बस जिंदगी के साथ आगे बढ़ते चले, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और जो भी हो बस चीयर अप. एंड रेडियो मस्ती आपके साथ.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Ek wajah hai. देश विदेश की खबरें सुनते हैं आपसे सुमेरा नमस्कार आपको
4: नमस्कार आदाब राष्ट्रसभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित रहा बजट 2026-2027 के सिलसिले में घोषित कदमों में बदलावों को लेकर जूली जोंगो ने स्पष्टीकरण चाहा अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि 500 घोषित कदमों में से सिर्फ एक कदम पर दोबारा गौर किया जा रहा है यानी स्टेट एज पेंशन के लिए मीन्स टेस्ट का रद्द किया जाना उन्होंने इस फैसले के संदर्भ में कई कमेटियों के क्याम का भी ऐलान किया राष्ट्रसभा में ही आज मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहसें की जा रही हैं जो भूमि और आवास मंत्रालय के अंतर्गत पेश किया गया है आज 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है और मॉरिशस और फ्रांस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी प्रतीक और विरासतें जिंदा हैं इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी बरकरार है आज सापसी वाई टोली मेमोजिन नामी प्रोग्राम पेश करेगी होश भोले में आयोजित की जाने वाली इस गतिविधि में गास्तों वालाइडन और जॉन कातिया भी हिस्सा लेने वाले हैं उमर चिमोलिस के आयोजक हैं विदेश में ईरानी ताकतों ने अपनाए हॉर्मुज में यूएई के दो टैंकरों को निशाना बनाया अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात को हमले किए हैं ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सहूलतों पर हमले किए हैं तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए एवेन्यू सिमोनेट कैनोट में 75 साल के 75 years old श्री बलराम कुदनी जो ब्लूका के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके घर एवेन्यू सिमोनेट कैनोट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताज साहब या बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM वन वे स्ट्रीट चुमे ग्रोनी में 64 साल की 64 years old श्रीमती बिंता रंगासामी पैदाशी नाम तिहा जो सुरेखा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल दोपहर के दो बजे इनके पति सदा रंगासामी के घर वन वे स्ट्रीट चुमे ग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 2 PM मॉडेलिन वाकुआ में 61 साल की 61 years old मोहतरमा जनाइबी टेप्सी पैदाइशी नाम अब्दुल करीम जो जैना के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं जनाजा आज सुपहर तीन बजे इनके शौहर रफीक महमूद टेप्सी के घर मॉडेलिन वाकुआ से उठाकर दफनाने के लिए बीगागा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा Funeral today at 3 PM शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
5: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation.

0: अभी तक तो मैं ही हूँ आपके साथ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 1:10. वेलकम बैक. आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294. कुछ रिक्वेस्ट भी है. सो नेक्स्ट गाना मिस्टर गायता स्पेशली आपके लिए फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमान.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.
0: प्यार अगर सच्चा हो ना तो आसमान क्या धरती भी झुक जाती है. बस एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना. थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए सुरेखा कैथकोको से रामधन परिवार के नाम. यह है रफी साहब की आवाज़.

0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: रेट्रो रिदम।
1: हमारा भी तो काम है कहना और हम तो कहेंगे जरूर दैट वाज अ सोलफुल गाना फ्रॉम द मूवी अमर प्रेम ऑफ कोर्स 1972 की मूवी। लेकिन ये जो मूवी है इसके बारे में शायद आपको पता नहीं कि ओरिजिनली शक्ति सामंत जो डायरेक्टर थे उन्होंने राजकुमार को लीड रोल में चुना था, लेकिन राजेश खन्ना उस जमाने के सुपरस्टार थे भाई और उन्होंने उनको इतना उनको मनवा ही लिया कि भाई ये मूवी मैं करूँगा ही करूँगा और इसको मैं पूरी तरह से शिद्दत से जस्टिस करूँगा। और इस फिल्म को इस अपने रोल को निभाने के लिए उन्होंने 24 टाइम्स जो ओरिजिनल मूवी रही निशी पद्मा बंगाली फिल्म निशी पद्मा उनको 24 बार देखी फिर इस प्रोजेक्ट को आग्रह की। और क्या क्या गाने रहे आर डी बर्मन साहब की, स्पेशली जो चिंगारी कोई अभी चिंगारी भड़केगी नहीं लेकिन ये जो गाना था इट वॉजंट इन द फिल्म ओरिजिनली, लेकिन जो लिरिसिस्ट रहे लेट आनंद बख्शी साहब उन्होंने शक्ति सामंत को जो लाइन्स रिसाइट किए और वो लाइन्स को इतने पसंद किए तो उन्होंने अपने आर्ट डायरेक्टर से किया कि भाई देखो एक कोलकाता ब्रिज जैसे आप रिक्रिएट कर दो स्टूडियो में। फिर इस गाने को शॉट किया गया और गाना हिट सुपरहिट बन गया। चलिए सुपरहिट लोग तो आप ही हैं हमारे हम सफर। थैंक यू सो मच वीना फ्रॉम फ्लैक, साथ में इंदिरा रेशमा विमल अंजू कृषा केशव नील मायशा तानिया मोता ब्लॉश से आपके पूरे परिवार के नाम। कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन 5499 1294। बढ़िया मौसम, थैंक यू सो मच प्रकाशवती।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
2: रियली हूप गाने आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बोल से ज़्यादा कभी कभी जो धुन होती है ना वो सबसे प्यारी होती है. तो मेलोडीज राजश्री एंड सतीश ऑन हॉलीडेज इन मॉरिशस. थैंक यू सो मच. एंजॉय माय योर स्टे. हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आपको बेटा अंतिश एंड बहू मनीषा. आपकी तरफ से माँ अनिता. फ्लाक से हैं आप. कैसे हैं आप? अभी अब थ्री लेट टू लव प्रीति. वैसे कुछ तो लोग कहेंगे. लोग जो भी बातें करें आप एंजॉय कीजिएगा अपनी जिंदगी. थैंक यू सो मच. यही गाना आपके नाम चलाते हैं भवन और माला फ्रॉम NHDCP. तो और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं बस एंजॉय करते रहे इन गानों में मस्त खो जाइए.

चाहा तो बहुत न चाहे तुम्हें, अब क्या समझे चाहत है या ना चाहत है, ये आप अपने दिल से पूछिए। 1:34 हुए हैं, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर यस राजन सतीश ऑन हॉलीडेज, आप हो फ्रॉम कौन जाबला, आपने प्रिसाइज किया हाँ कौन जाबला से। चलिए व्हाटएवर यू माइट बी, मॉरिशस में है या फिर सात समुंदर पार, रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ। आपको ले चलते हैं बैक टू द 70s एंड 80s, ये हैं राम तेरी गंगा मेली, रविंद्र जैन का संगीत, लता जी का गाया हुआ सुन साहिबा सुन सुन दोस्त, 5499 1294 पर नीतू आपके साथ, कुछ और घड़ियां हैं आपके साथ यानी कि 2 बजे तक।

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.
2: और जब किसी की याद आती है और जब किसी याद सताती भी है, ओ माय गॉड, दिल रोने पड़ता है. बस 1:44, थैंक यू सो मच. और आपका साथ मिल रहा है, थैंक यू. एंड फैमिलीज के नाम टू द लिसनर्स, गायत्री फ्रॉम पोर्टविस, माय डियर, थैंक यू सो मच.

0: potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Office's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: RM2 Radio Mystique.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: 2 o'clock. देश विदेश की खबरें सुनते हैं एक बार फिर आपसे सुमेरा नमस्कार आपको
7: नमस्कार आदाब 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है मॉरिशस और फ्रांस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी प्रतीक और विरासतें जिंदा हैं इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी है राष्ट्रीय सभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित रहा बजट 2026-2027 के सिलसिले में घोषित कदमों में बदलावों को लेकर जुले जोंगों ने स्पष्टीकरण चाहा अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि 500 घोषित कदमों में से सिर्फ एक कदम पर दोबारा गौर किया जा रहा है यानी स्टेट एज पेंशन के लिए मींस टेस्ट का रद्द किया जाना उन्होंने इस फैसले के संदर्भ में कई कमेटियों के क्याम का भी ऐलान किया आज सापसी वाई टोली मेमोजेनोसिड नामी प्रोग्राम पेश करेगी रोश ब्रुले में आयोजित की जाने वाली इस गतिविधि में गास्तों वालाइडेन और जॉन कातिया भी हिस्सा लेने वाले हैं उमर चिमल इसके आयोजक हैं विदेश में ईरानी ताकतों ने आबनाए हुर्मुज में यूएई के दो टैंकरों को निशाना बनाया अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात को हमले किए ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सहूलतों पर हमले किए हैं

0: तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. रॉयल रोड लावोंचिया में 89 साल की 89 years old श्रीमती जयमुंती रामफल. श्रीमती जयमुंती रामफल पैदाइशी नाम चमन, जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल एक बजे इनके बेटे विजन रामफल के घर रॉयल रोड लावोंचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. टैगोर रोड कोंगुब में 17 साल के 17 years old माइनर जय आर्या गर्बू जो आयुष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 11 बजे इनके पिता जगराज गर्बू के घर टैगोर रोड कोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगुब की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है.
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Mikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: धक धक बॉलीवुड. वेल इट्स टाइम कि बॉलीवुड की खबरें हम आप तक पहुंचाएं. एवरी डे 2 से लेकर 4 बजे तक, यानी कि ऑन वीक डेज मंडे टू फ्राइडे आपके लिए होता है बॉम्बे टॉकीज. सो मैं हूं परी आपके साथ. 2:07 हो चुके हैं एंड ब्यूटीफुल ट्यूसडे आफ्टरनून. इट्स 14th of July और आप सभी का स्वागत कर रहे हैं हम इस खूबसूरत सी दोपहर में. आपके लिए लेकर आए हैं बी टाउन की कुछ खबरें और साथ में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर. कुछ प्यारे गानों के साथ आपकी इस आफ्टरनून का हम सजाने वाले हैं और अगर आप भी साथ दे रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट वन आपके नाम.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, बॉलीवुड की एक कल्ट क्लासिक है जिसका नाम है तुम्बाड़, और तुम्बाड़ 2 के मेकर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया है कि फिल्म में आलिया भट्ट भी एक अहम किरदार निभाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट की कास्टिंग सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आई और इस वजह से एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और लगता है कि आलिया भट्ट का इट्स नॉट अ गुड टाइम। जहां पर वो कांस में गई थी वहां पर भी वो ट्रोल हुई, उसके बाद उनकी फिल्म अल्फा को भी ट्रोल किया गया और अब तुम्बाड़ 2 की बारी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद तुम्बाड़ 2 से आलिया भट्ट भी जुड़ गई है और इस हॉरर थ्रिलर फिल्म में वो एक अहम किरदार निभाने वाली है। फिल्म से जुड़कर आलिया भट्ट काफी खुश है, लेकिन पहली फिल्म तुम्बाड़ को पसंद करने वाले फैंस दूसरे पार्ट में आलिया भट्ट की कास्टिंग से थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं मेकर्स के डिसीजन को वो गलत भी बता रहे हैं। जानिए ऐसा नजरिया सोशल मीडिया यूजर्स का क्यों है। सो एक यूजर ने तुम्बाड़ 2 की आलिया वाली पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, आलिया से तुम्बाड़ 2 को बचाओ। अन्य एक यूजर ने कमेंट किया कि फिल्म तुम्बाड़ अपनी कहानी कहने के अंदाज, विजन और उन कलाकारों के जबरदस्त काम की वजह से एक कल्ट क्लासिक बन गई जिन्हें बॉलीवुड के बड़े कैंप्स का सपोर्ट नहीं था। एक फैन के तौर पर यह देखना निराशाजनक है कि इतनी अनोखी फ्रेंचाइजी अब मेन स्ट्रीम स्टार पावर की तरफ झुक रही है। मुझे बस उम्मीद है कि तुम्बाड़ 2 अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी और काबिल कलाकारों को चमकने का मौका देगी। अन्य एक यूजर ने भी नाराजगी जताते हुए लिखा, प्लीज आलिया को कास्ट मत करो, फिल्म आलिया सेंट्रिक हो जाएगी और हम तुम्बाड़ जैसी असली कहानी चाहते हैं और जिसमें कम आंकी गई यानी कि अंडर रेटेड स्टार्स हो। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इतने इसने जो तुम्बाड़ 1 से बनी जो भी हाइप थी उसे खराब कर दिया। सो यहां पर जो फैंस है वो काफी निराश नजर आ रहे हैं जो तुम्बाड़ को पसंद करते हैं, और ये तो हम जानते हैं कि ये फिल्म एक लो बजट फिल्म थी और विद टाइम ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। हॉरर फिल्म्स में इसका नाम भी शुमार हो गया है और एक काफ़ी ऊंचे दर्जे पर इसका नाम शुमार हुआ है क्योंकि लोगों को इसकी कहानी और द वे ऑफ टेलिंग स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा था और इट वाज वेरी नेचुरल। जैसे लोगों को जो स्टार्स थे जिनका कोई भी लेना देना नहीं था मेन स्ट्रीम एक्टर्स के साथ, ऐसे एक्टर्स को एक्टिंग करते देखना और इतनी अच्छी एक्टिंग करते देखना, इसे तुम्बाड़ ने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था। और अब जब आलिया भट्ट का नाम इससे जुड़ा है तो तुम्बाड़ के जो फैंस हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड नज़र नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है। वैसे एक्साइटिंग बात यह है कि तुम्बाड़ 2

अब रिलीज होने वाली है, यानी कि बनने की कगार पर है, और तुम्बड़ के जो फैंस है वो इस फिल्म को देखना चाहेंगे, लेकिन आगे इसका रिएक्शन कैसा होता है इसके लिए करना है थोड़ा सा इंतजार। चलिए दोस्तों, कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एंड बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती। We have this beautiful track. हमारे सभी listeners के नाम भूलिएगा नहीं, आपके messages, आपके dedications happening 5499-1294 पर।

So well, it's time for some latest songs, जहाँ पर आपके लिए हम बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स भी पहुँचाते हैं और अभी के लिए जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिस वन गोज आउट आप सभी के नाम धूमधाम फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए. फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड हमारे साथ, आपकी इस आफ्टरनून को हम खास और स्पेशल बना रहे हैं और कुछ प्यारे गाने आपकी इस आफ्टरनून को स्पेशल बनाने के लिए. वैसे होता है ना कि लंच टाइम के बाद जो टाइम है थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, थोड़ा सा लेजी लेजी फील होता है, लेकिन अभी तो परफेक्ट टाइम है जहाँ पर यू कैन ग्रैब योर चाय या कॉफी और उसके साथ बी टाउन की अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं. सो चलिए दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 PM ऑन RM2 रेडियो मस्ती. कुछ प्यारे गाने आपके लिए, एंड शामिल होता हुआ ये गाना फ्रॉम द फिल्म धूमधाम. एंजॉय दिस वन.

एंड वेल फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं एवरीडे स्पेशल, लेकिन कुछ दिन एक्स्ट्रा खास होते हैं, क्योंकि वो दिन जो होते हैं वो हमारे लव्ड वंस के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल होते हैं. सो आज हमारी प्यारी सी दीपशिका, शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एंड लोड्स ऑफ लव टू हर. हमेशा यहाँ स्टूडियो में रहती है, भागती दौड़ती रहती है, मस्ती करती रहती है और सबको हैप्पीनेस बांटती रहती है. सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज, कीप हैप्पी ऑलवेज, लोड्स ऑफ लव टू यू दीपशिका, एंड बहुत सारी गुड विशेज हमारी पूरी RM2 रेडियो मस्ती टीम की ओर से, एंड साथ ही साथ हमारी पूरी MBC की टीम. Wishing you a very happy birthday. Have a great one, and we have this special song. Aapke naam. चलिए, सो इट्स योर बर्थडे, बनाएंगे खास, एंड स्पेशल विशेस टू यू दीपशिका. साथ ही जो भी लोग आज ऑन 14th ऑफ जुलाई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये गाना आप सभी के नाम, हैप्पी वाला बर्थडे आप सभी को.

memories, good wishes to you and to all your loved ones. चलिए अभी के लिए तो प्यार पहुंचा रहे हैं अब तक और we have this happy happy song कह सकते हैं मस्ती भरा गाना आपकी इस afternoon में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए. मैं हूं परी आपके साथ on Radio Masti. From the film crew we have this one. Enjoy this one.

एंड वेल फ्रेंड्स, यहां पर वी हैव दिस लेटेस्ट ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम. इट्स प्रियांश श्रीवास्तव की आवाज एंड अ ब्यूटीफुल ट्रैक. और ये है फ्रॉम मुसाफिर कैफे. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, ड्राइव करते हुए कुछ ऐसे गाने चल जाएं तो लगता है कि बस लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. लेकिन ऐसे मौके मिलते कहां हैं जहां पर वीक डेज में आपको ड्राइविंग का मौका मिले. कुछ लोग होते हैं लकी लकी. सो अगर इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस आपकी इस आफ्टरनून को खास और स्पेशल बनाना चाहते हैं, परी का साथ है. एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
5: एंड वेल फ्रेंड्स, अब ये गाना है उस फिल्म से जो आजकल चारों तरफ धमाल मचा रही है. यस, फ्रॉम द फिल्म धमाल 4 वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए, नीरज श्रीधर की आवाज. एंड इट्स 2:56. विद दिस ट्रैक हम बनने वाले हैं आपके समाचारों की ओर लौट कर आएंगे विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स विद सम लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स. परी का साथ रहेगा और अगर आप भी साथ दे रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन ऑन 5499-1294 टू गेट यू इन द वीक डेज मूड. वैसे वीक डेज में मूड को थोड़ा सा सेट करना मुश्किल हो जाता है, काम काम, वो भी

इतना सारा काम कि आराम का टाइम ही नहीं मिलता लेकिन वी कैन ऑलवेज सेट योर मूड विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग सो वी हैव दिस वन फ्रॉम द फिल्म धमाल 4 चलिए एंजॉय करें इस गाने को लौट कर आएंगे समाचारों के बाद

0: Tak, tak, Bollywood.
1: Radio Musti. RM2 Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Pa-ra-pa-pa-pa. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
7: नमस्कार आदाब. राष्ट्रसभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन. राष्ट्रीय बजट में हालिया घोषित कदमों में लाए गए बदलावों के संदर्भ में रहा. विपक्ष नेता ने जानना चाहा कि क्यों इस कदम पर बदलाव लाया जा रहा है. अपने जवाब में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि 500 घोषित कदमों में से सिर्फ एक पर दोबारा गौर किया जा रहा है, यानी स्टेट एज पेंशन के लिए मींस टेस्ट का रद्द किया जाना. उन्होंने इस फैसले के सिलसिले में कई समितियों के क्याम का भी ऐलान किया है. कई दशकों से निजी कॉलेज मॉरिशस में शिक्षा के विकास में सक्रिय तरीके से योगदान दे रहे हैं. इस साल कई इदारों ने अपने वजूद का 60वीं वर्षगांठ मनाई है. यूनिवर्सल कॉलेज उनमें से एक है जो इस साल अपनी 65वीं सालगिरह मना रहा है. 14 जुलाई की तारीख फ्रांस के लिए बेहद ही अहम. वो अपना राष्ट्र दिवस मना रहा है. मॉरिशस और फ्रांस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है. उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी, मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी विरासतें जिंदा हैं. इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी है. विदेश में गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलने वाला है. यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई ताकि गजापति में पुनः निर्माण कार्य किए जा सकें. 1 मिलियन वासी तंबुओं में अभी तक रह रहे हैं क्योंकि इसराइल और हमास के बीच लड़ाइयों की वजह से काफ़ी तोड़फोड़ और नुकसान हुए. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. रामधुनी लेन बॉडीज अमूरत में 89 साल की 89 years old श्रीमती आलूपी रामधुनी पैदाइश नाम सिबरन, जो लयका चाची के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज शाम 4 बजे इनके बेटे मनोज रामधुनी के घर

0: आमदनी लेन बारे सामुवाद से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती
1: रेडियो

सो वार्म वेलकम दोस्तों, 3:06 ट्यूसडे आफ्टरनून और समाचारों के बाद लौट कर आ गए हैं कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एंड कुछ लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स के साथ आपकी इस आफ्टरनून को सजाने. फॉर नाउ वी हैव दिस गाना फ्रॉम द फिल्म एनिमी और आप सभी को डेडिकेट कर रहे हैं ये गाना टू सेट यू इन द मूड. हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप तो हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही तो हम चाहते हैं. सो आपकी इस ट्यूसडे आफ्टरनून को खास और स्पेशल बनाएंगे ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी होंगे इस आवर में ऑन 5499 1294. सो फॉर नाउ वी हैव दिस ट्रैक आप सभी के नाम.

0: Musti.
1: So that was Monica aapke liye and well friends it's time aapke messages aapke dedications 5499-1294 par aapne pahuncha diye hain so thank you so much yahan par gana hoga for mom dad sister Ashti aur aapke bete ke naam husband Hinalesh and for two friends Nandita and Karishma साथ ये है regards from Vishti Katrabon से हमारा साथ दे रही हैं so गाना goes out for all your loved ones Vishti thank you so much आपने tune in किया है RM2 Radio मस्ती के साथ लाल माटी से Davison हमारा साथ दे रहे हैं आप so आपका भी हम warm welcome कर रहे हैं गाना होगा आपके लिए have a wonderful time यहाँ पर दानिश हमारा साथ दे रहे हैं आप भी सो वेल नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट फॉर यू एंड थैंक यू सो मच आपने हमारे साथ कनेक्ट किया एंड थैंक यू फॉर चूजिंग आरएम टू रेडियो मस्ती एज योर रेडियो पार्टनर गाना होगा आपके नाम एंड वेल यहाँ पर आ रहा है एक और स्वीट मैसेज और कहते हैं इट्स माय बर्थडे एंड आपको एक स्वीट सा गिफ्ट मिला फ्रॉम रेडियो मस्ती सो वेल सुया बिहारी कुंगुमा से थैंक यू सो मच आप खुश तो हम भी खुश और आपके बर्थडे को तो बनाना था हमें खास सो वेल आपके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज ये है फ्रॉम मामा शारदा और साथ में है दीदी अनीता सभी बगन एंड बिमल परिवार आपको भेज रहे हैं प्यार एंड ऑफकोर्स आर एम टू रेडियो मस्ती टीम विशिंग यू अ हैप्पी हैप्पी बर्थडे शाम देवी चैन साथ दे रहे हैं आप और कहते हैं घर में घर पर हूँ और अपनी गर्मा गर्म कॉफी को एंजॉय कर रहा हूँ एंड डेडिकेटिंग अगला गाना ये होगा सभी दोस्तों के नाम ये है फॉर सनी रवीन मालवा वी ऑल्सो हैव विनोद सूर्या एंड रॉकी सभी देवी चैन परिवार ऑफ पेरिवे सबको याद कर रहे हैं आप सो गाना फॉर ऑल योर लव्ड वंस कहते हैं गाना फॉर स्वीट अंजलि एंड ये है फ्रॉम काव्या उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज सीता बोलूराम साथ दे रही हैं आप शातो बनारस से डेडिकेट कर रही हैं गाना सभी अपनों के नाम सो नेक्स्ट ट्रैक होगा आपके लिए एंड प्रमिला जी प्लेंदे पपाए से आप भी जुड़ गई हैं हमारे साथ सो थैंक यू सो मच आपने ट्यून इन किया है इतने प्यार से सो वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना आप सभी के नाम टेकन फ्रॉम द फिल्म डंकी वी हैव दिस गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सभी लिसनर्स के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती एंजॉय दिस वन

वेल फ्रेंड्स विद दिस ट्रैक इट्स टाइम फॉर परी टू से गुडबाय. आ रही है गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स. उनका साथ दीजिए. आपसे मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज.

0: such a beautiful and mesmerizing track aap logon ke liye on R2 Radio Masti. Ji haan dosto, ye hain Aafri Rahat Fateh Ali Khan aur Momina ki awazon mein khas kar aapke liye. Filhal ke liye just check your time, it's already 4 PM.
1: R2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: The Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ. नमस्कार और आदाब.
7: नमस्कार आदाब. प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 38 किस्म की पैदावारों के लिए लागू है. इनमें शिशुओं के खाने पीने की चीजें, तेल, दूध वाली पैदावारें शामिल हैं. राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड में 2.5 बिलियन रुपए लगाएगी ताकि जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित रहने के लिए परियोजनाएं चलाई जा सकें. इथियोपियन अलायंस की पहली मुर्शसुरान के दो दिन बाद कूटनीतिक और आर्थिक नतीजे सामने आ रहे हैं. इथियोपिया के राष्ट्र विदेश मंत्री हादेरा अदमासू और डेलीगेशन ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टवी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से एक रस्मी मुलाकात की. दोनों देशों के बीच आर्थिक, तिजारती, पर्यटन और निवेश को और मजबूत करने की बातचीत हुई, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब इथियोपिया दुनिया में सबसे गतिशील अर्थनीतियों में से एक है. इस 14 जुलाई को पुलिस ने एक थंडर स्ट्राइक कार्रवाई चलाई. नॉर्थर्न डिवीजन और मेट्रो नॉर्थ के सहयोग से रात के 3 बजे से सुबह 10 बजे के बीच ये कार्रवाई चलाई गई. मुख्तलिफ जुर्मों के लिए 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें घरेलू हिंसा, बुजुर्गों पर के प्रति बदसलूकी और गैर कानूनी तरीके से मुर्शस में रहने के जुर्म शामिल हैं. विदेश में गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलेगा. यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसका ऐलान किया गया ताकि गजापति में पुनर्निर्माण कार्य किए जा सकें. 1 मिलियन वासी तंबुओं में रह रहे हैं क्योंकि इसराइल और हमास के बीच लड़ाई से बहुत नुकसान हुए हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार और आदाब.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.

Hey, what's up, my beautiful people out there, जो RM2 से जुड़े हुए हैं. Wishing all of you a very good afternoon. नमस्कार और अगिनिशा का प्रणाम. जी हाँ दोस्तों, welcome in your Raftaar vibes. That's your filmy rights on Radio Masti. और हम आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए रात की 7 o'clock तक. ट्यूजडे का दिन है, ऑलमोस्ट रैप अप मोड में है. ऑफिस की फाइलें जो है बंद हो चुकी है, लैपटॉप शट हो रहे हैं और अब शुरू हो रहा है सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, घर की तरफ वाली ड्राइव. जी हाँ, और वो भी रेडियो मस्ती के साथ. सो ट्रैफिक चाहे स्लो हो या फास्ट, टेंशन बिल्कुल मत लेना मेरी जान, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक मैं हूँ आपका साथ देने के लिए, फुल ऑन म्यूजिक, फुल ऑन मस्ती और पॉजिटिव वाइब्स लेकर. सो सीट बेल्ट लगा लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि रफ्तार वाइब्स शुरू हो चुकी है एंड आई एम गोइंग टू ड्राइव यू बैक होम विद सम गुड गुड म्यूजिक.

Bollywood. बिल्कुल जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:14 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑफ कोर्स नो डाउट अबाउट इट, इट्स अ रेडियो मस्ती। वैसे अभी अगर आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ के ड्राइव कर रहे हो या इवन बस के विंडो से आप बाहर देख रहे हो और घर का जो काउंटडाउन है वो चल रहा है आपके दिमाग में कि कब पहुंचेंगे घर, सो दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू माय डियर द अपकमिंग सॉन्ग। वैसे ट्यूसडे को एक्साइटिंग बनाना थोड़ी मुश्किल होता है, बट म्यूजिक हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू ऑलवेज ऑन रेडियो मस्ती। तो चलिए मूड को करते हैं थोड़ा सा अपग्रेड हमारे साथ और सुनते हैं एक ऐसा गाना जो आपकी ड्राइव को और भी मस्त बना देते हैं। सो स्टे राइट हियर विद मी गिनेशन ऑन रफ्तार वाइब्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती एंड लेट्स गेट बैक टू सम लवली सुविनियर्स। तो चलिए लेट्स गेट रेडी टू सिंग ऑल टुगेदर ऑन रेडियो मस्ती।

0: I really hope that you guys are really loving these beautiful गानों का selections जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए in your rafter vibes. So कहाँ तक पहुँचे हो मेरी जान मेरे सारे सारे listeners. I know बहुत जल्दी होता है ना कि काम खत्म कर ले और घर वापस चले. But do think about those people who are still at work. अगर अभी भी आपका काम पे हो सुबह को गाज to you my dear. आप अपने आप को अकेला ना समझना क्योंकि हम हैं ना आपका साथ देने के लिए. We have some good music selections. और जैसे कि आपको पता है every afternoon गिन्नी जब भी आती है ना तो खाली हाथ नहीं आती है. Of course, I've got you some lovely gifts. यानी कि अभी मेरे पास एक कैडू है आपको देने के लिए. I've got you a voucher, यानी कि I've got you a ticket to watch the concert live of Abhijit Bhattacharya in Mauritius. So just to let you know, you can play with MBC right now and win. Yes, you can stand a chance to win a ticket to the Golden 90s era tour featuring jo Abhijit Bhattacharya. He's coming live in Mauritius for his concert happening on Saturday 25th of July 2026. और वो शुरू हो जाएगा 7:30 PM रात को at SVICC at Pai. So it's very easy. You can step in a world of nostalgia and relive the unforgettable voice जो define करते हैं Bollywood's golden era. So आप enjoy कर सकते हैं कैसा evening of timeless melodies, legendary hits and pure musical magic, my dear. Tickets starts from 850 rupees only and they are available on sale at moticket.mu and Réseau Otayo. हम तो बस इतना कह सकते हैं कि don't miss this opportunity, this unforgettable concert experience. Reservation के लिए we have a hotline number 466-99-99-466-99-99. फिलहाल के लिए अगर आप जीतना चाहेंगे वन टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव एंड यू जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन द गेम. आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन प्ले विद अस एंड जस्ट ट्राई टू बी आवर लकी विनर. पूछेंगे एक सवाल, आपको सुनाएंगे एक डायलॉग, आपको बस हमें बताना है कि ये डायलॉग कौन सी मूवी से लिया गया है.
1: करना नहीं होता प्यार बिना कुछ कहे भी प्यार ही है, प्यार कुर्बानी भी है, प्यार एक दूसरे के लिए चुप रहना भी है. प्यार का मतलब सिर्फ प्यार को पाना नहीं, प्यार किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी मिटाना भी.
0: बिल्कुल जी, प्यार तो प्यार ही होता है और हम भी तो प्यार बांट रहे हैं. यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस ब्यूटीफुल डायलॉग इज टेकन फ्रॉम अ विच मूवी. जी हाँ, विच मूवी. अपना सही जवाब आप भेज सकते हैं ऑन 5499194 पर 5 99 12 94. सही जवाब अपना फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ भेजिएगा जरूर. बेस्ट ऑफ लक टू यू. यू कैन बी माई लकी विनर एंड विन अ वाउचर, अ टिकट टू वॉच the concert of Abhijit Bhattacharya live in concert in Mauritius on Saturday 25th of July. So best of luck to you.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: ऐसे गाने अगर बजेंगे तो वाकई हम भी तो बावरी हो ही जाएंगे ना, क्योंकि ऐसे गाने हमें मजबूर कर देते हैं कि हम हाथ पैर हिलाना शुरू कर दे। बिल्कुल जी, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, थैंक यू सो सो मच जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है। आपका स्वागत है जी रफ्तार वॉइस में। रोड्स पे ट्रैफिक है, फोन्स भी बज रहे होंगे ना, लेकिन अपना स्माइल जो है ना इसको मत रोकना मेरी जान। कभी कभी घर पहुँचने का जो सफर है ना, वो भी डेस्टिनेशन जितना ही ब्यूटीफुल होता है, स्पेशली जब स्पीकर्स पे चल रहा है आपका फेवरेट म्यूजिक। मैं होंगी और जब तक आप सेफली घर नहीं पहुंच जाते तब तक कंपनी मेरी ही रहेगी। ये है रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती। और साथ में जैसे कि आपको पता है, वी आर हैविंग अ लवली गेम हैपनिंग राइट नाउ माय डियर। सो यू व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गिव मी द राइट आंसर, जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। और लकी ड्रॉ में अभी किसका नंबर निकल आया है। आई नो जितने भी लोग पार्टिसिपेट आपने किया है, यू माइट बी वॉन्डरिंग कि शायद काश मेरा नाम अनाउंस हो जाए ऑन रेडियो मस्ती। तो चलिए जी, फिलहाल हाल के लिए आपको बता रहे हैं कि हमारे पास एक टिकट है टू गिव अवे टू यू टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव, यस, ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य इन मॉरिशस, सैटरडे 25 जुलाई 2026 फ्रॉम 7:30 PM एट SVICC पर। पूछा गया है एक सवाल, आपको सुनाया एक डायलॉग और हमने पूछा कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है।
3: करना नहीं होता प्यार बिना कुछ कहे भी, प्यार ही है, प्यार कुर्बानी भी है, प्यार एक दूसरे के लिए चुप रहना भी।
2: बिल्कुल जी, लेकिन हम तो चुप नहीं रहेंगे क्योंकि ये जो डायलॉग है, इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे। यस, इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे। और सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज का लकी विनर है विशिष्टा सिरतन। विशिष्टा सिरतन, शी इज फ्रॉम मोसलमो VOS प्लेन मान्यो। Congratulations to you, my sweetheart, Vishishta Siratan. Yes, you are from Mont-Salmon VOS, Plaine Magnon. So you are winning a ticket to watch the concert of Abhijit live in Mauritius on 25th of July, 2026. Congratulations to you once again. And thank you so much to all those who have participated today. So chaliye, meri jaan, jaise ki aapko pata hai ki hum lekar aate hain aap logon ke liye bahut sare gift. Dil chota nahi karte. I know you're feeling bad, aap nahi jeete, but still you have to participate. Again, you can participate again 6 aur 7 ke beech mein hai, thodi der baad, so you can win it, get the chance to win the ticket again. To chaliye ji, congratulations to our lucky winner and jitne bhi hamare die hard fans hain of Abhijit da, to ye agla gana unke naam.
4: Chhod de sari duniya kisi ke liye, ye munasib nahi aadmi ke liye. Indivar ne insaan ko pehchana aur uska taaruf duniya se karaya. महान गीतकार जिन्होंने कभी उर्दू को हिंदी भाषा में ना हावी होने दिया, ना तो कभी उनका सहारा लिया, एक दूजे के साथी भागीदार और एक दूजे को वाह वाह करने वाले इंदीवर और कल्याण जी आनंद जी।

0: You're listening to a Radio Musti.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
0: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: वेलकम चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:53 हो चुके हैं एंड यस स्पोर्ट्स गुरु थोड़ी देर से आए लेकिन आ ही गए तो चलिए जी अभी फिलहाल के लिए लेट्स ऑल वेलकम हमारे ही स्पोर्ट्स गुरु अरविंद जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू
4: गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड
5: फ्रांस और स्पेन में से एक टीम आज रात वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जाएगी पहला सेमीफाइनल आज यूरोप के दो दिग्गज दो हैवीवेट्स आमने सामने डाला स्टेडियम में ये एक वर्ल्ड क्लब क्लासिक से कम नहीं फ्रांस की टीम में टॉप स्कोरर गोल्डन बूट चैलेंजर किलियन एम्बापे हैं साथ में उस्मान देम्बेले माइकल ओलिजे वाकोला दुवे और टर्की भी है जानलेवा अटैकिंग लाइनअप फ्रांस में यूरो 2024 में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराया था सेमीफाइनल में स्पेन की टीम के बारे में कहा जा रहा है कि भले ही सेमीफाइनल में है पर द बेस्ट फुटबॉल इज येट टू कम मतलब अभी तक लाहोगा अपने बेहतरीन खेल के करीब है स्टार खिलाड़ी लामिन यामाल अभी तक अपना खास कमाल नहीं दिखा पाया है कल वो 19 साल का हो जाएगा अभी तक केवल 1 गोल स्कोर किया है पर 4 गोल स्कोर करने वाला मिकेल ओयोजाबाल फिर सब्स्टिट्यूट मिकेल मोरिनो भी है फ्रांस के लिए 8th वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बैक टू बैक तीसरा स्पेन की टीम 36 मैचों में अनडिफीटेड अपराजित है इस वर्ल्ड कप में केवल 1 गोल कंसीड किया है स्पेन वर्सेस फ्रांस क्लासिक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आज रात 11 बजे लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर भी ट्रांसफर न्यूज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आंद्रे सांटोस को साइन कर लिया है ब्राजील का इंटरनेशनल खिलाड़ी ओल्ड ट्राफर्ड में आ गया साथ में यूनाइटेड एस्टन विला से चेलेमांस के पीछे है क्रिकेट भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक जीत लॉर्ड्स में खेले गए पहले विमेंस टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 270 रनों से हराया स्नेह राणा 4 विकेट ले पाई और जैसे कल हमने आप लोगों को बताया मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सदस्य बन गया है स्कॉटलैंड में मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन के प्रेसिडेंट सलीम भट्ट हैं वहां पर और इस ऐतिहासिक कदम पर उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की मॉरिशस के लिए क्रिकेट के विकास में एक नया पन्ना खोला गया तो इट्स द फाइनल काउंटडाउन वर्ल्ड कप फाइनल में जाने के लिए आज टिकट ये फ्रांस के लिए या स्पेन के लिए अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि ये दो यूरोप के दो महारथी दो दिग्गज हैं 11 बजे से लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर जरूर दिखेगा और शुरू में जैसे कहा था हमने स्कॉटलैंड से सलीम भट्ट से बात की रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन बाय आईसीसी आइए उनको सुनते हैं
6: बोंजो मॉरिशस I have a great news for my fellow Mauritians. Mauritius Cricket Federation has been recognized in the ICC Cricket Council. To achieve this, we have been supported by Sports Ministry of Mauritius, High Commission of India, Special

His Excellency Mr. Anurag Srivastava, Councillor Anirudh Singh Ji, और जो हमारे ICC के President है Mr. Jai Shah, और BCCI Secretary Debijit Saika. मैं इन सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ और इस काम को अचीव करने के लिए Mauritius Cricket Federation ने बहुत सारी मेहनत की है।

0: और इंग्लैंड के बीच इस पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। बोलिएगा नहीं, वर्ल्ड कप का मैच आज 11 बजे लाइव स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी आप पर ये 11 बजे होगा। बाय बाय।
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
2: Méga promo code Quality Déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Prix cassé, low lavoir. La lumière moderne, prix soc. L'ordoise, à ban prix qui pouvait ou même gagner pas quoi. Décoration pour la case, en dents, en déo.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: तो चलिए जी चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एक्जैक्टली 5:10 हो चुके हैं वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो दैट्स योर रफ्तार वाइब्स ऑफ कोर्स योर फिल्मी राइट्स विद मी निशान आर एम टू रेडियो मस्ती 5899124 जी हां फिलहाल के लिए यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस डू लेट मी नो कहां से आप साथ दे रहे हो एंड टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज लेट्स मेक देम फील मच मोर स्पेशल टुडे ऑन रेडियो मस्ती 5499124 पर आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर लवली मैसेजेस
1: RM2 Radio Mystique.

थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. वैसे डोंट टच दैट डायल. जी हाँ, आपने ठीक से सुना है, डोंट टच एनीथिंग, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरी जान. कमिंग अप बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर गाने, थोड़ी सी फन बातें और वो एनर्जी जो आपके इस ट्यूजडे को फ्राइडे जैसा फील करा दे. बिल्कुल जी, मैं हूँ आज अगिनी शोर, आप साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स. वेयर एक्चुअली यू आर गेटिंग योर मोस्ट फेवरेट गाने, एक्चुअली वेयर योर ड्राइव गेट्स इट्स साउंडट्रैक. सो थैंक यू सो मच जी, और आपके डेडिकेशन ऑल देयर ऑन 5499-1294 पर. वाह जी वाह, इतने सारे मैसेजेस. तो चलिए जी, जाना मेरी जाना कैसे हो ये अगला गाना आपके लिए एंड आपकी बेटी के लिए, रीमा शिष्टा, जनिता अंशिनी, सिल्विया, युविक, ऋषि, सुसहन परिवार के लिए जो साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. हे जिया जो ग्रॉ गुब की रहने वाली है, इट्स अ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू माई स्वीट हार्ट.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल हमारी प्यारी सी छोटी सी जिया। हे हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम योर पापा सूरज, आपके मामा नवीन, आपकी जो बहन है जानवी और जो भाई हैं जानेश, दे आर ऑल विशिंग योर मैजिकल बर्थडे। हे श्वेता हुकुम फ्रॉम बोना कोया, यू जस्ट वांट टू विश योर मामा सुया जो कंगमा के रहने वाली है, हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी एंड बेस्ट विशेज। आपकी बेटी, आपकी दामाद रोशन, रिद्धि, सोनाक्षी, विकी, कीर्ति, अवनी, वंश एंड ऑल फैमिली बोलते हैं आई लव यू मम्मी एंड हैप्पी बर्थडे टू वीना जागीसा। हे वीना जी, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑफ बेल वी मोरेल, गॉड ब्लेस यू माय डियर एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल सिस्टर्स कुमारी, गीता, ज्ञानती, सरोज, आपके दोनों प्यारे भाई जो हैं संजय एंड विजय, ललिता जीटन फ्रॉम लवांचा ने आपको विश किया है लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू माय डियर। तो चलिए जी, ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली टू यू सुभाती मोहम्मद रेजा जी, और वो बोलते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं एंड यस जी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, लिसनिंग टू योर प्रोग्राम एंड ब्यूटिफुल वॉइस, फील ऑन द मस्ती। सो हाउज द मस्ती, जोश में हो ना? किसी की याद आ गई। तो चलिए जी, ये अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम हु कैन रियली फील द मस्ती ऑन दिस ब्यूटिफुल ट्यूसडे आफ्टरनून।

बिल्कुल जी, पीछे वाली पतली गली में जरूर आना, पनवारी के यहाँ पे जरूर मिलेंगे मेरी जान। कैसा लगा ये खूबसूरत सा गाना? पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ा नाचूं आप लोगों के साथ। So stay tuned and stay connected on your number one radio station. Check your time जी, 5:31 हो चुके हैं। वैसे अगर आप घर के बिल्कुल पास हो तो ड्राइव को एंजॉय कीजिए, और अगर अभी भी थोड़ा सफर बाकी है तो डोंट वरी, आई हैव गॉट यू द बेस्ट प्लेलिस्ट, इट्स सॉर्टेड माय डियर। सो म्यूजिक को फील कीजिए, स्ट्रेस को पीछे छोड़ दीजिए और स्माइल के साथ घर पहुंचे। दिस इज आरजे गिरीशा आपके साथ देने के लिए ऑन आवर 2 रेडियो मस्ती, एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, ऑफ कोर्स इट्स योर फिल्मी राइट्स, एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग। लेकिन उससे पहले साथ में चेक करते हैं किसने किसको याद किया है, यानी कि योर डेडिकेशन ऑन 5491294 पर, एंड एंजॉयिंग अ लवली गाने, ऑफन द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड the great gentlest heart. Okay ji, theek hai my meetha dil, my sweetheart, yani ki Gayatri ne bheja hai ye pyara sa message. The next one, beti Avni ke liye, wife Manisha ke liye, and that's coming from Roshan. And the next one, hey RJ, your energy, passion, cheerful voice, every program ko special hi bana dete hain, aur aapka pyara, aapka jo hamesha aashirwada bhejte ho uske liye kya, of course aap log ho to hum hai na yahan pe. I just want to wish my student of secondary college best of luck for their exam. Actually sare students ko hum best of luck जरूर विश करना चाहेंगे। एंड कुमार देवी चंद जी फ्रॉम पेरेबेया, टीचर ऑफ डिजाइन टेक्नोलॉजी, अपने सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून आंटी, गुड आफ्टरनून, नाइस सिलेक्शन, हेलो बेटा, यले शाम फ्रॉम सुरीनाम, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। We do have Nirav Kistu, who has become first. Actually, अच्छा वो पहला first position में निकल आया है exams में, that's so good. अपने class में उनके मम्मी पापा बहन की तरफ से सबकी तरफ से congratulations, और the entire family from Kalba sending you so much love. Hey Neema Jibun from Modalbea, I'm listening to your program. सारे गाने awesome से भी awesome है. I'm feeling so relaxed and to your beautiful song. Of course, सारे गाने अच्छे ही हैं. आपके husband विशाल के लिए, आपके तीन बेटों के लिए, यादव, नीलेश और वीरेश, और मेरे लिए, how sweet of you. So आप हमारे टीम के लिए भी so sweet है. The next one for you, my dear. तो चलिए जी, to all those who are tuned to R&T Radio Masti, thank you so much जी साथ देने के लिए, and to all those who are driving, तो चलिए, I'm going to slow beat a little bit the pitch, the जो गाने है कि जैसे हम पेपी सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे अभी के लिए, I'll just get you something romantic, something very relaxing. Sit back, relax and enjoy this one, and it goes out straight away from my heart to all those who are truly, madly, deeply in love. To chaliye, ye khaskar aapke naam.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: टाइम बीता चला जा रहा है 5:38 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन R12 रेडियो मस्ती रफ्तार वाइब्स में लेकर आई हैं आप लोगों के लिए सम फैशन टिप्स। रोज तो हम बात करते हैं अबाउट लेडीज एंड जेंट्स, लेकिन आज बात करेंगे, टिप्स देंगे बच्चों के लिए। वैसे विंटर आ गया है और सिर्फ बड़े ही नहीं, हमारे लिटिल फैशन स्टार्स भी जो है दिख सकते हैं सुपर स्टाइलिश। लेयरिंग जो है इज द की ऑफ अ कम्फी फुल स्लीव टी, उसके ऊपर क्यूट स्वेटर या स्टाइलिश जैकेट पहन सकते हैं, वार्म भी रहेगा और फैशनेबल भी। वैसे विंटर वार्ड्रोब जो है ना उसको बोरिंग मत बनाइए, किड्स के लिए ब्राइट कलर्स जैसे मस्टर्ड है, रेड, रॉयल ब्लू एंड एमराल्ड ग्रीन चूज कीजिए। कोल्ड वेदर में ये शेड्स बहुत वाइब्रेंट लगते हैं और फोटोज भी अमेजिंग आते हैं। तो जल्दी से आप अपने बच्चों को क्यूटी क्यूटी बना लीजिए, और अगर आप चाहे तो आप लोग हमें पिक्चर्स भी भेज सकते हैं जब आप उनको अच्छे अच्छे शेल ब्राइट कलर्स पहनाएंगे ऑन 5499-1294 पर।
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: तो चलिए जी, अगर बच्चों की बात हो रही है तो ये गाना उदित नारायण की आवाज में लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा आई डोंट नो कैसा काम करेगा।

0: खूबसूरत गानों का सिलेक्शन बस चलता ही जा रहा है आपके और हमारे बीच में. रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग ईच एंड एवरी सॉन्ग जो लेकर आई हैं आप लोगों के लिए. टू ऑल दोस हु आर हिटिंग द रोड ड्राइव केयरफुली बाबा एंड टू ऑल दोस जो अभी घर पहुंच गई हैं, हम तो कहेंगे आराम से बैठ जाइए, 10-15 मिनट आराम कर लीजिए और उसके बाद बाकी जो काम है काम पे लग जाइए. ठीक है, तो अभी के लिए 5491294 पर आई गॉट योर डेडिकेशन. चलिए जी, ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर यू माई लवली गुच्ची, यानी कि गुच्ची ना, यस, एंड फॉर यू आपकी मम्मा प्रीति के लिए, डैड गुरु के लिए एंड मिश्ती एज वेल, योर ब्यूटीफुल एंड लवली फैमिली के लिए, योर स्वीट सिस्टर के लिए. सो थैंक यू सो मच जी. और ये अगला गाना गुच्ची हमारी तरफ से आपके नाम अर्शद के लिए. ये अगला गाना जस्ट वांट टू से आई लव यू, ये हम नहीं आपकी रेबिका, आपकी वाइफ बोल रही है. सो रेबिका आई नो यू रियली लव हिम. सो द नेक्स्ट वन आई जस्ट वांट टू विश अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू प्रिया महेश, दे आर लिसनिंग फ्रॉम पेरिस फ्रॉम द सिटी ऑफ लव. हेलो जी, हाय माय स्वीट हार्ट, ये है वीडू. वीडू ने हाय भेजा है तो हम बाय तो नहीं कहेंगे. हेलो जी, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एज वेल, आउटस्टैंडिंग बेब डैगन श्वेता रविश प्रशल रविश आप एंड फैमिलीज. द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय स्वीट बेबी अंजलि एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम काव्या. हाय कोको, हाय शमीना, हाउ आर यू. सो द नेक्स्ट वन आई जस्ट वांट टू डेडिकेट टू ऑल दोस हु आर स्टिल हिटिंग द रोड इफ यू आर ड्राइविंग. तो चलिए जी, ये अगला गाना स्पेशली आपके नाम.
1: RM2 Radio Mastery.

0: Bollywood.
1: Radio Musti. RM2.
2: Radio Musti.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: OM2।
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावट की

0: नहीं बेटा प्यार में। हाँ
1: बिल्कुल जी, प्यार में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि प्यार में हम आ जाते हैं आप लोगों का साथ देने के लिए 4 बजे से लेकर आपके 7 बजे तक इन योर रफ्तार वाइब्स। इट्स मी किनिशांत माइक जो बड़े प्यार से आ जाती हूं साथ देने के लिए। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए 5:56 हो चुके हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 6 बजे की समाचारों की ओर, और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती।
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. ऑन रेडियो मस्ती चेक योर टाइम इट 6 PM.
1: रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
2: Feel the Musti. The Musti.
0: पेश है समाचार बुलेटिन. सबसे पहले आज की बड़ी खबरें. सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार है क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता. विपक्ष नेता KPNQ के जवाब में प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं. प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 38 किस्म की पैदावारों के लिए लागू. इनमें शिशुओं के खाने पीने की चीज़ें, तेल, दूध वाली पैदावारें शामिल. राष्ट्रसभा में PMQT के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया. संसदीय प्रश्नों के सत्र के दौरान विपक्ष सांसद जोआना बेहोंशे ने मुरशस में जल सुरक्षा के सिलसिले में सवाल किया. मंत्री पात्रिक आसियाबादेन ने ऐलान किया कि देश के उत्तर में एक डिसैलिनेशन इकाई स्थापित की जाएगी. और गजापती को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलेगा. EU के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई. नमस्कार, रादाब. सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार है क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता. विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे पर बगैर गौर करते हुए. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 6 कदमों के बारे में भी बात की जिन्हें अमल में लाया जा चुका है ताकि इस सुधार के अतिरिक्त दाम और सार्वजनिक कर्ज के घाटे को कम किया जा सके. राष्ट्रसभा में ही प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर बातचीत यानी एक सत्र के दौरान प्लास्टिक प्रधानमंत्री ने कहा कि शिशुओं के खाने पीने की चीज़ें, तेल, दूध वाली पैदावारें प्लास्टिक बोतलों पर एक्साइज ड्यूटी के उन 38 किस्म की पैदावारों में शामिल हैं जो लागू हैं. राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड में 2.5 बिलियन रुपए लगाएगी ताकि जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित रहने के लिए परियोजनाएं चलाई जा सके. मारवी चाकोना की तसुनारान.
5: प्रधानमंत्री ने सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी 38 श्रेणियों के उत्पादों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इसका आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है और फिलहाल इनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है.
6: The House may wish to note that there's already a climate and sustainability fund to support national initiatives to protect, manage and invest and as well restore our natural ecosystems and combat the effects of climate change. For the financial year 2026-2027, government will transfer 2.5 billion rupees from the consolidated fund to the climate and sustainability fund. There is presently a scheme operated by the Mauritius Revenue Authority which provides for a financial incentive to be granted to exporters and local recyclers of waste.

0: PET bottles to encourage the removal of waste plastic bottles from the waste stream. Under this scheme, exporters of waste PET bottles are refunded an amount of 15 rupees per kilogram of waste PET bottles exported, and local recyclers an amount of 30 rupees per kilogram of waste PET bottle which are recycled locally. Given that the excise duty will be extended to cover plastic bottles, the refund scheme will also be extended to cover waste public plastic bottles to be exported or recycled, whether they are subject to excise duty or not.
1: सांसद दोहियाउन ने नफरत भरी भाषणों की निगरानी और रोकथाम, विशेष रूप से ऑनलाइन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। प्रधानमंत्री ने इस विरासत को संरक्षित करने और लागू कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: In a bid to oppress the previous government, close access to social media and slowed internet debit. When we came to power, we vowed that never again should we allow our shared peace to be corroded by totalitarian minds. We condemned any attempt to muffle expression. This is an imperative in a multicultural and pluralistic democratic society. Madam Speaker, I shall be ruthless against anyone, and I repeat, against anyone who jeopardizes national unity and social cohesion. Government remains resolute in its determination to preserve the unity of our nation and to assure that Mauritius continues to be peaceful, inclusive, and a harmonious society. Any new measure must remain proportionate and consistent with the constitutional protection for freedom of expression.
1: सांसद जमन का प्रश्न फरवरी 2025 में तेहूज में 114 मिलियन रुपए की बरामदगी की जांच से संबंधित था। प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारियों का घटनाक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी भी शामिल है।
2: Can the Honorable Prime Minister inform the House whether the FCC is enough equipped, has a required technical expertise and manpower to carry such cases, as there is a long list of cases pending at the level of the FCC?
0: That is actually the case, and I think I must accept what the Honourable Member is saying, that we need experts to deal with all those things. They're not trained enough for that. That is why we have people from former Scotland Yard officers who are actually helping them, assisting them in the inquiry.
1: डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने सांसद का जैन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान 6 नई विदेशी एयरलाइनों ने मॉरिशस के लिए कमर्शियल उड़ानें संचालित करने हेतु आवेदन किया है।
0: गवर्नमेंट इज पर्सुइंग ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ एयर एक्सेस थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स। दिस अप्रोच एम्स टू एनहांस एयर कनेक्टिविटी व्हाइल एंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंटिन्यूड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ of our national carrier, that is Air Mauritius Limited. Madam Speaker, air connectivity is extremely important for the development of our country. Any decision for opening up our airspace to any airline would be taken after a thorough assessment has been made as to the benefits that may accrue to Mauritius from such an agreement.
1: सांसद अंकुचिल का प्रश्न ट्रियानो के सबवे में कैमरे लगाने के बारे में था। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि सेफ सिटी प्रणाली के कैमरे सबवे के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मॉरिशस टेलीकॉम नई तकनीकी विशिष्टताओं पर काम कर रहा है।
3: संसदीय प्रश्नों के सत्र के दौरान विपक्ष सांसद जोआना बेरोंजे ने मॉरिशस में जल सुरक्षा के सिलसिले में सवाल किया। मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने ऐलान किया कि देश के उत्तर में एक डिसलिनेशन इकाई स्थापित की जाएगी जो सौर ऊर्जा से कार्यरत होगी। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस इकाई के जरिए रोजाना 10,000 से 50,000 वर्ग मीटर जल का उत्पादन किया जाएगा, ताकि घरों, खेतों, व्यापारों और पर्यटन गतिविधियों की मांगों को पूरा किया जा सके। मंत्री पैट्रिक असियावादेन को सुनते हैं।
4: Le gouvernement étudie la mise en place d'une unité de dessalement alimentée par l'énergie solaire dans la région du Nord. Une expression of interest a été lancée en septembre 2025, l'année dernière, pour la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur la mise en place d'une usine de dessalement de grande capacité, comprise en 10 000 et 50 000 mètres cubes par jour, dans le nord du pays. Monsieur le vice-président, 4 candidats présélectionnés ont été invités à soumettre leurs offres dans le cadre d'un appel d'offres lancé en mai 2026, cette année-ci. Les propositions doivent être reçues au plus tard le 24 juillet de cette année-ci, donc dans quelques jours. Donc le contrat sera attribué et l'étude est prévue d'ici septembre 2026 et va durer autour de 8 à 10 mois.

0: बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बता रहे थे सरकार पेंशन सुधार पर बरकरार हैं क्योंकि मौजूदा प्रणाली का समर्थन नहीं किया जा सकता। विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि बजट प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त खर्चों में बदलाव नजर आने लगे हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे पर बगैर गौर करते हुए। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 6 कदमों के बारे में भी बात की जिन्हें अमल में लाया जा चुका है ताकि इस सुधार के अतिरिक्त दाम और सार्वजनिक कर्ज के घाटे को कम किया जा सके। दसापालास्वामी विधि मासीपुरन।
1: In the light of the changes or policy reversals in relation to the measures
2: अपने प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के माध्यम से विपक्ष नेता ने पूछा कि क्या बजट में किए गए परिवर्तनों के बाद एक संशोधित व्यापक आर्थिक और बजटीय ढांचा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री के अनुसार लगभग 500 कदमों में से केवल एक की समीक्षा की गई है, पेंशन के लिए मीन्स टेस्ट को हटाना। डॉक्टर नवीन राम गुलाम का कहना है कि बजटीय प्रक्रिया में इस तरह की स्थिति के लिए पहले से ही प्रावधान है।
1: With the removal of the means test, it is estimated
2: मीन्स टेस्ट को हटाने के साथ जनवरी से जून 2027 की अवधि के लिए स्टेट एज पेंशन के तहत अतिरिक्त व्यय का अनुमान 6.2 बिलियन रुपए है, जो कि जीडीपी का 0.7% है। पूरे एक वर्ष की अवधि में यदि पहले से लागू किए गए मिटिगेशन कदमों को शामिल नहीं किया जाता तो इसका प्रभाव जीडीपी के 1.5% से अधिक हो जाता। जहां तक संशोधित व्यापक आर्थिक और बजटीय ढांचे को प्रस्तुत करने का प्रश्न है, मैं ये दोहराना चाहता हूं कि बजटीय प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष के अंत में बजटरी एग्जीक्यूशन का मूल्यांकन पहले से ही शामिल है, जो इस तरह की स्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में रखता है। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि अप्रोप्रिएशन एक्ट 2027 को 232.4 बिलियन रुपए के कुल बजट के साथ अपनाया गया है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट एस्टिमेट्स 2026-2027 के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए बेसिक रिटायरमेंट पेंशन बीओपी के भुगतान हेतु 30.1 बिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। जनवरी से जून 2027 की अवधि के लिए स्टेट एज पेंशन के भुगतान हेतु 20.5 बिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं। मीन्स टेस्ट को हटाने के कारण स्टेट एज पेंशन को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक सटीक राशि अभी ज्ञात नहीं है, क्योंकि सरकार को अभी उन भावी पेंशन भोगियों की सही संख्या नहीं पता है जो 60 वर्ष की आयु से ही अपना पेंशन लेना चुनेंगे। बजटीय प्रक्रिया में संविधान की धारा 105 के अनुसार यदि आवश्यक हो तो किसी भी संबंधित व्यय मद के लिए सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत करने का प्रावधान भी है, इसलिए अप्रोप्रिएशन एक्ट की कुल राशि को बदलने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नेता का कहना है कि मीन्स टेस्ट को हटाने और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली अतिरिक्त लागत के बाद सरकार ने बजटीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए पहले ही 6 कदम लागू कर दिए हैं।
1: These include first
2: इन कदमों में शामिल है, पहला, निवेश परियोजनाओं की प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरा, वित्त मंत्रालय के एक अतिरिक्त वित्तीय सचिव की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई गई है जिसका उद्देश्य प्रत्येक मंत्रालय के खर्चों की जाँच करना और डायरेक्टर ऑफ ऑडिट की रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करना है। इसके संबंध में कई बैठकें हो चुकी हैं और खर्चों को तर्कसंगत बनाने के रास्ते तलाश दिए गए हैं। तीसरा, मैं व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता पर एक स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता करूंगा जिसका उद्देश्य दोहराव, अक्षमताओं और फिजूल खर्ची की पहचान करना है। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करनी होगी। चौथा, वित्त मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसे कर प्रणाली की गहन समीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है ताकि उसकी निष्पक्षता, दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके। टैक्स विशेषज्ञों से गठित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ साथ डॉक्टर फिलिप बेकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा समर्थित ये समिति अगले महीने अपना काम शुरू करेगी। इस समीक्षा को पूरा होते ही कदम लागू किए जाएंगे जिनसे सरकारी राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पांचवा, वित्त मंत्रालय कुछ गैर रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री और साथ ही कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रहा है ताकि इन परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ाया जा सके

0: और राज्य की हिस्सेदारी को लाभदायक बनाया जा सके। छठा, CSG अंशदान के संबंध में सरकार एक सुचारू संक्रमण की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को स्थायी रूप से समाप्त करने से पहले सीमित अवधि के लिए इन अंशदानों का एक हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड में जमा करना जारी रखने पर विचार कर रही है।
1: टू क्रेडिट पार्ट ऑफ द CSG कंट्रीब्यूशंस टू द कंसोलिडेटेड फंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड बिफोर दिस प्रैक्टिस इज फेज्ड आउट एंटायरली।
0: जोली जोंगा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या बजट में शागस समझौते से मिलने वाली अपेक्षित राजस्व को शामिल किया गया है।
1: एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद द यूके टू रिमाइंड यू एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड दे हैवंट गोन थ्रू द प्रोसेस इन द यूके वी आर वेरी कॉन्फिडेंट मैडम स्पीकर दैट दिस विल हैपन।
0: विपक्ष नेता का एक और प्रश्न, क्या सरकार पेंशन सुधारों पर वापस विचार करने का इरादा रखती है?
2: Will government backpedal completely on the pension reforms altogether?
1: No question of doing that, Madam Speaker. We all knew, and they knew, that the basic retirement pension is unsustainable in its actual form. Now they're promising, if ever they come back, they will continue on the same path of unsustainability, which brought the country in the financial abyss we find ourselves today.
0: यूनियनों द्वारा घोषित आम हड़ताल की स्थिति में अंत में जोली जोंगा ने पूछा कि क्या सरकार पूरे फाइनेंस बिल को स्थगित करने का इरादा रखती है।
2: Will the Honourable Prime Minister consider suspending the finance bill first and engage in genuine tripartite social dialogue, or is he prepared, Madam Speaker, to plunge the country into economic paralysis?
1: So, well, I did not hear the union say that they want to suspend the finance bill. You are saying that. I didn't hear the union say that. And secondly, there will be no change from what I have said. And that's it.
3: राष्ट्रसभा में आज मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहसें की गई। भूमि और आवास मंत्री ने इस विधेयक को पेश किया जिसके तहत मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सेवाएं शुरू की जाएंगी। इस इकाई से देश क्षेत्रीय जल के बारे में जानने और सच्चाई प्रकाशित करने का मौका मिल रहा है देश को। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि ये बिल एक छोटे टापू देश की प्रभुसत्ता की भी बुनियाद है। उन्होंने इस विधेयक के तीन पहलू आम किए, कानूनी जिम्मेदारी और जियोग्राफिकल हकीकत, शागुस द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता तथा आर्थिक पहलू और क्षेत्रीय जल का विकास शामिल है। मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल को आज पेश किया गया। अन्य खबरों में एपिलेप्सी के खिलाफ प्रेस्क्राइब प्रिगाबालिन दवा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रगनोश लोग इसका अलग तरीके से सेवन कर रहे हैं। FCC ने इस दवा की सप्लाई के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय की फार्मास्यूटिकल सेवाओं में कई खामियों का उल्लेख किया। इसके जवाब में आयात की प्रणालियों और प्रक्रियाओं के एक जायजे से पता चला है कि फार्मास्यूटिकल सेवा जिम्मेदार ने कहा कि कानूनी ढांचा पुराना हो गया है और इसे फार्मेसी क्षेत्र से जुड़े कानूनों पर दोबारा गौर करने की उम्मीद है। इस 14 जुलाई को पुलिस ने एक थंडर स्ट्राइक कार्रवाई चलाई। नॉर्दर्न डिवीजन और मेट्रो नॉर्थ के सहयोग से रात के 3 बजे से सुबह 10 बजे के बीच ये कार्रवाई चलाई गई। मुख्तलिफ जुर्मों के लिए 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें घरेलू हिंसा और बुजुर्गों के प्रति हिंसा तथा गैर कानूनी तरीके से मॉरिशस में रहने के अपराध शामिल हैं। इथियोपियन एयरलाइंस की पहली मॉरिशस उड़ान के 2 दिन बाद कूटनीतिक और आर्थिक नतीजे सामने आ रहे हैं। इथियोपिया के राष्ट्र विदेश मंत्री हादिरा अदमासू और डेलीगेशन ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग पोटली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तिजारती, पर्यटन और निवेश को मजबूत करने की बातचीत हुई, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब इथियोपिया दुनिया में सबसे गतिशील अर्थनीतियों में से एक है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर यह विवरण।
0: इथियोपियन एयरलाइंस की पिछले रविवार को प्लेजांस के लिए पहली उड़ान न केवल एक नए हवाई संपर्क की शुरुआत है बल्कि ये मॉरिशस और इथियोपिया के बीच आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय भी खोलती है। इस मंगलवार विदेश राज्य मंत्री आदिरा अदमासू के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल जिसमें इथियोपियन एयरलाइंस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर लेमा गुतेता भी शामिल थे, का पोटली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम द्वारा स्वागत किया गया। बातचीत का मुख्य केंद्र हवाई संपर्क को मजबूत करना और मॉरिशस तथा अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक

0: के बीच व्यापारिक आदान प्रदान का विकास करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इथियोपिया 2026 में 9.2% की दर के साथ अफ्रीका में सबसे तेज आर्थिक विकास दर्ज करने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और सेवाओं में बड़े निवेश से प्रेरित है। मॉरिशस के लिए ट्रेजरी बिल्डिंग में हुई ये बैठक अफ्रीकी महाद्वीप के एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी के साथ साझेदारी को गहरा करने की साझा इच्छा को दर्शाती है।
1: Tourism. Mauritius is known for its financial center.
0: पर्यटन के अलावा मॉरिशस अपने वित्तीय केंद्र और चीनी उद्योग के विकास के लिए जाना जाता है, अतः कई अनुभव और विशेषज्ञता पाई जाती है जो मॉरिशस इथियोपिया के साथ साझा कर सकता है। दूसरी ओर इथियोपिया एक औद्योगिक तथा कृषि केंद्र है जो विकसित हो रहा है, उसका कृषि खाद्य तेजी से बढ़ रहा है। उद्देश्य है दोनों देशों की जानकारियों को साझा करना ताकि दोनों देशों को लाभ हो। 130 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ इथियोपिया आज अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये उच्च क्षमता वाला बाजार मॉरिशस की कंपनियों के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र AfCFTA के ढांचे के भीतर।
2: आज 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। फ्रांस और मॉरिशस के बीच सदियों पुराना रिश्ता है, उस वक्त से जब टापू में फ्रांसीसी हुकूमत थी। मॉरिशस में आज गुजरे जमानों के बावजूद फ्रांसीसी प्रतीक और विरासतें जिंदा है। इन गहरे संबंधों के आधार पर हमारे देश और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ क्षेत्रों में साझेदारी है। और अब विदेश की खबरें। गजापति को यूरोप से $1 बिलियन का दान मिलेगा। यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सम्मेलन में इसका ऐलान किया गया ताकि गजापति में पुनर्निर्माण कार्य किए जा सकें। 1 मिलियन वासी तंबुओं में रह रहे हैं क्योंकि इसराइल और हमास के बीच हुई लड़ाइयों में बहुत नुकसानात हुए हैं। ईरानी ताकतों ने अब नए हुरमूज में UAE के 2 टैंकरों को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात को हमले किए। ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में भी अमेरिकी सहूलतों पर हमले किए हैं। और अब फुटबॉल की बात। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज रात फ्रांस और स्पेन की टीमें मैदान में उतरेंगी। ठीक 11 बजे ये मैच प्रसारित किया जाएगा और कल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला होगा।
3: पिछले 2-3 सालों में ये दो टीमें 2 बार आमने सामने आई हैं और दोनों बार स्पेन की जीत हुई है। एक यूरो 2024 के सेमीफाइनल में, दूसरा 2025 के यूरोपियन नेशंस कप के सेमीफाइनल में। फ्रांस पासा पलटना चाहेगा। सेमीफाइनल में बदले की खुशबू मिल रही है, पर स्पेन के मैनेजर लुइस दे ला फुएंते सीना ठोक कर कह रहा है कि फ्रांस को 2 बार लगातार हराने वाली टीम स्पेन ही है। ये एक चेतावनी है फ्रांस के लिए। मैदान में 2 अलग अलग खेल का अंदाज होगा। स्पेन गेंद को ज्यादा अपने साथ रखता है और उनकी ताकत चट्टान जैसा डिफेंस है। इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन रक्षा पंक्ति अब तक स्पेन के गोलकीपर पर केवल 1 गोल स्कोर किया गया है। 650 मिनट तक गोलकीपर उनई एसाइमन पर गोल नहीं बना है, ये एक रिकॉर्ड है। सामने है फ्रांस की धुआंधार जानलेवा अटैक, ऐसे खिलाड़ी जो किसी भी डिफेंस को चीर फार सकते हैं। मोरक्को को आराम से हराकर इनमें आत्मविश्वास आया है। दिमागी खेल बहुत होगा दोनों मैनेजर के बीच। जिजे देशों खिलाड़ी और मैनेजर के रूप में वर्ल्ड चैंपियन बना है, ऐसे मौकों से वो गुजर चुका है। दे ला फुएंते बीच मैच में अपनी टीम को बदलना जानता है। आज दाव पे है न्यूयॉर्क का एक टिकट। मौका है फ्रांस को अपना बदला पूरा करने के लिए और 14 जुलाई के दिन स्पेन से लगातार हार से छुटकारा पाने के लिए। मैदान में स्पेन फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उस पर कोई तरस या रहम नहीं दिखाएगा। फ्रांस के जश्न पर पानी फेरने का काम कर सकता है।
2: और बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, पूर्व दक्षिण और पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों तथा हवाई

ढलानों पर हल्की वर्षाएं होंगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगुन के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 20 से 22, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:46 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए थोड़ी देर में।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: कोंकागोल केन्या में 70 साल के 70 years old श्री हरिदत्त बिसुनी जो राज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थे कल दो बजे इनके बेटे हरीश बिसुनी के घर कोंकागोल केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंकागोल केन्या की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 2 PM। कोंकावाल क्यूपिप में 86 साल की 86 years old श्रीमती सानवंती सिहरी पैदाइशी नाम रामधनी जो शांति के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 1 PM। आली डिजाकासिया बुवालूमी 60 साल के 61 years old श्री गासेन नियासीमुलू जो बाओलैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके घर आली डिजाकासिया बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 10 AM। टैगोर रोड गोंगुप में 70 साल के 17 years old माइनर जय आर्या गबू जो आयुष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके पिता जगराज गबू के घर टैगोर रोड घोंगुप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगुप की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड लावोंचुया में 89 साल की 89 years old श्रीमती जयमंती रामफल पैदाइशी नाम चमन जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनके बेटे विजन रामफल के घर रॉयल रोड लावोंचुया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुया की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 1 PM। वन वे स्ट्रीट शिमेग्रोनी में 64 साल की 64 years old श्रीमती बिंता रंगासामी पैदाइशी नाम तिहा जो सुरेखा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दो बजे इनके पति सादा रंगासामी के घर वन वे स्ट्रीट शिमेग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 2 PM। एवेन्यू सिमोनेट कानोट में 75 साल के 75 years old श्री बलराम कुडनी जो ब्लोका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 10 बजे इनके घर एवेन्यू सिमोनेट कानोट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोता सैंपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

वेल जी चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 6:33 तो हो चुके हैं. वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो. दैट्स योर रफ्तार वाइब्स. योर फील मी राइट्स विद मी आज अगेन ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती. जी हां दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार जी, अर्गनेशा का प्रणाम. और जैसे कि आपको पता है, हमने आपको बताया था दैट विल बी हैविंग वन मोर गेम. यू विल बी हैविंग वन मोर अपॉर्चुनिटी टू विन टिकट

बिल्कुल जी, सुनते रहना और हमेशा साथ है, यूं ही देते रहना। ऑन आवर टू रेडियो मस्ती, 6:42 हो चुके हैं। यस, गिनेश ऑन द माइक साथ देने के लिए। एंड आई नो यू गाइस आर वेटिंग टू नो कि कौन है आज का लकी विनर, हु इज गोइंग टू द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य। बिल्कुल दोस्तों, जो अभी गाना हमने सुनाया था आपको, वो जो लड़की सबसे हसीन है, एंड हमने पूछा था कि ये गाना जो है कौन सी मूवी से लिया गया है। द राइट आंसर इज बादशाह। लेकिन आज का बादशाह कौन है? आज का लकी विनर है हमारे प्यारे मिस्टर नितीश तिलकधारी, जो है सियाकोंस्टांस सैंट पियर से। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर नितीश तिलकधारी, सियाकोंस्टांस सैंट पियर से। यू आर विनिंग अ टिकट टू वॉच लाइव इन कॉन्सर्ट अभिजीत भट्टाचार्य इन मॉरिशस ऑन द 25th ऑफ जुलाई 2026 फ्रॉम 7:30 PM एट SVICC अटपा। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो हमारे दोस्त लोग हैं, अगर टिकट खरीदना चाहोगे सो इट स्टार्ट फ्रॉम 850 rupees ओनली, एंड यू कैन ग्रैब योर टिकट्स एट mooticket.mu एंड रिजो उतर यू। सो इट्स एन ओकेजन नॉट टू मिस, एंड आई डू हैव अ हॉटलाइन नंबर फॉर योर रिजर्वेशन, यू कैन कॉल ऑन 466-999-466-99-99। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू नितीश, एंड देयर विल बी समवन कॉलिंग यू फ्रॉम द MBC to let you know how you're going to collect your ticket. Thank you so much to all those, you know.

ने आज पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए जी बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन आवर एंटर रेडियो मस्ती, स्पेशली टू ऑल दोस हु आर हिटिंग द रोड एंड ड्राइविंग, जा रहे हैं एट द एयरपोर्ट। हे शिना कोइराची, मैम ऑन द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू, एंड यस आई एम सो सॉरी हम मिल नहीं पाए, लेकिन आई जस्ट वांट टू विश यू बो वायाज माय डियर, एंड टू ऑल दोस हु आर ट्रैवलिंग टुनाइट, बो वायाज टू यू।

क्योंकि जाने का वक्त हो गया है. रेंडेवू कल आफ्टरनून फिर से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इन योर रफ्तार वाइब्स. तब तक के लिए हम आपको छोड़ के जा रहे हैं विव दिव्या जो फुल ऑन सेट है टू एंटरटेन यू इन हर इवनिंग लाउंज.

0: कुछ लोग कहते हैं कि घर वापस आकर एकदम से सुकून मिलता है और कुछ लोग कहते हैं कि होम इज़ नॉट अ बिल्डिंग, होम इज़ समवन, जिनको मिलने के बाद आपको इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि बस प्यार को बढ़ावा देना आप पसंद करते हैं। तो चलिए ऐसे ही प्यार को बढ़ावा देने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ खूबसूरत गाने अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक नॉनस्टॉप आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल सूदिंग म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर आपको मौका मिलेगा टू सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप एंजॉइंग द वंडरफुल गाने ऑन द वेव्स ऑफ RM2। तो चलिए आपके मैसेजेस का भी हम इंतजार कर रहे हैं ऑन 5499 1294, और साथ में लाइन खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन कॉल्स का भी हम इंतजार कर रहे हैं ऑन 4028035। पर आप हमें जरूर याद करें।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Well, कभी कभी जिंदगी में प्यार इतना खूबसूरत बन जाता है कि डर लगने लगता है, कहीं ये सपना है या फिर हकीकत है। We have this beautiful gana और आपसे हम यही कहेंगे कि हकीकत में अगर आपको प्यार को बढ़ाना है तो उतने ही प्यार से आपको प्यार को reciprocate भी करना है, उसमें थोड़ा सा प्यार और भी add करना है और इसको थोड़ा सा multiply करना है।

0: आपकी दिल की लगी आपसे क्या कहती है तो हम जरूर जाना चाहेंगे ऑन 5499 1294। चलिए आपकी मैसेजेस हम तक जरूर पहुंच रही हैं। एंड यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया है। प्रणाम नमस्ते दिव्या जी, इट फील्स सो गुड टू हियर योर वॉइस बैक फॉर इवनिंग लाउंज, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। नितीश रामदिकल, आप हैं मोताई ब्लॉन्ज से, सॉन्ग सिलेक्शंस को पसंद करने के लिए भी आपको दिल से शुक्रिया। इवनिंग लाउंज इज ऑसम, दैट्स रियली नाइस कि आप हर एक गीत को ऐसे ही एंजॉय कर रही है, जस्ट अप्रिशिएटिंग द म्यूजिक। और अगला गाना आपकी प्यारी सी ब्यूटीफुल ममा मीला रामदिकल के लिए फॉर ब्यूटीफुल परी एंड आरजे हंसिनी के लिए भी, दैट्स रियली स्वीट। और चलिए वी हैव ऋषि विदेशी कनेक्टेड विद अस। RM2 लिसनर्स के लिए आपने गाना मांगा है, आपकी मूडी गर्लफ्रेंड के लिए एंड गुड फ्रेंड ऑल्सो ऑल हु आर गोइंग टू बी अ पार्ट of the second term, good luck and do listen to RM2, that's really sweet। And yahan par agla gana jayega specially Sangeeta ji ke liye aur unke parivar ke liye, dhanyawad aapko bhi aur aapko bhi shubhratri। Hema Bisu aap hai Katubon se, dedicating the next gana for mama Samila, papa Manoj, behne hai Dimple, Pooja, bhai hai Avish, Tiraj, Navish and sabhi Mohan family ke liye aapne bahut hi pyar se agla gana manga hai। And we also would like to dedicate the next gana for Darren, Shweta, Ravish, Prisha, Lavsha and Apadu family of Oshnoor kehti hain, good vibes, awesome show as usual. Thank you so much। And चलिए इसी के साथ कुछ और खूबसूरत गीत की ओर हम बढ़ेंगे। वैसे 9 बजे तक हमारा और आपका साथ है, कहने के लिए तो टाइम ही टाइम है, लेकिन बिलीव मी जब अच्छा म्यूज़िक चलता है ना और जब अच्छा वक्त चलता है तो ये वक्त भी पलक झपकते ही निकल ही जाता है। तो चलिए रेत से रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है ये वक्त, एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Musti।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

वैसे आपका मन आपसे क्या कह रहा है आप जरूर हम तक पहुंचाएं अपनी दिल की बात ऑन 5499-1294। हमने बताया था ना कि पलक झपकते ही बस ये वक्त निकलता जाएगा और जब अच्छा वक्त होता है तो पता ही नहीं चलता है ये वक्त कैसे ही रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है। सो विल ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी मोमेंट मेमोरेबल और ख़ुद और खूबसूरत यादें बनाने के लिए और इसको क्रिएट करने के लिए वी नीड गुड मोमेंट्स और गुड मोमेंट के लिए हमें चाहिए गुड म्यूज़िक ताकि आपको थोड़ा बहुत मौका मिले टू रिलैक्स और

0: आपको मौका मिले कुछ और प्यार में डूबने के लिए। चले प्यार की दुनिया में एक बार फिर से आपको ले जा रही हैं अप टिल 9 पीएम दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज। और वैसे कहते हैं ना कि दिल आपसे जो भी कहता है आप उसकी बात सुन लीजिए, क्योंकि योर हार्ट माइट बी ऑन द लेफ्ट साइड बट इट्स ऑलवेज राइट। अब दिल का सवाल है और प्यार का सवाल है, तो दिल और दिमाग के जंग में हमेशा दिल जीत दिल की ही होती है, तो हमेशा ट्राई टू लिसन टू योर हार्ट। और वैसे कहते हैं ना कि कभी कभी प्यार में बहुत सारे ऐसे एडवाइसेस आपको मिलते रहते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका दिल क्या कह रहा है और आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। एंड आई जस्ट होप कि यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। एंड यहाँ पर डोंट फॉरगेट वी आर वेलकमिंग योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर विच इज़ 5499-1294।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नहीं सामने वो अलग बात है, जब किसी से प्यार करते हैं आप लोग और वो सामने होते हैं तो सच में वो अलग ही बात होती है, और सामने नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाय उसके बिना गुजारा नहीं हो पाएगा। लेकिन प्यार में सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि आपको उनके बिना भी काफ़ी वक्त गुजारना पड़ता है, ताकि प्यार में आपको पेशेंस आना चाहिए। यस, प्यार आपको सब्र करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, और साथ में प्यार से रहने भी सिखाता है। और चलिए यहाँ पर आपका मैसेज आया है हमारी प्यारी सी अनीता जी ऑफ लेकॉन्फ्लैक, आप कैसी हैं? वेरी स्वीट गाने हमेशा की तरह। प्लीज़ नेक्स्ट गाना बेटे अंतिश बहू मनीषा के लिए, एंड उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो चलिए स्पेशल विशेज अंतिश और मनीषा के लिए। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, और आपने हमें विश किया है बूं कुआज सभी रेडियो मस्ती टीम को। थैंक यू सो मच अनीता जी, आप हैं लेकॉन्फ्लैक से और इतने प्यार से हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू दिल से आपको। एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

है मेरे दिल में और हम दोनों मुश्किल में, ऐसा क्यों है भाई? अगर आप एक दूसरे के दिल में समाए हुए हो तो ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। अगर आप प्यार को एक टास्क की तरह लेंगे तो ऑफ कोर्स सब कुछ मुश्किल ही दिखेगा, लेकिन अगर आप प्यार को प्यार की तरह ट्रीट करेंगे और बस आपके दिमाग में ये आएगा कि प्यार में जितने भी सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली विल फॉल इनटू प्लेसेस। चलिए, इट्स 8:39 ऑलरेडी, दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज, एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं इस वक्त, थैंक यू सो मच। ज्योति जी, आप है शातु बिनागा से, नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर आशनी रेखा सुरेखा, मतलब फैमिली के लिए और मेरे लिए, दैट्स रियली स्वीट। यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, एक्चुअली आपने बस एक स्टिकर हमें भेजा है, सोचने वाला स्टिकर, और नाम है आपका सकीला। यस, आई कैन सी कि आपका नाम सकीला है। आप का बस एक ही स्टिकर हमें मिला है, सोचने वाला, तो आप इतना क्या सोच रहे हैं सकीला और क्या कहना चाहते हैं? आप ज़रूर हम तक अपना मैसेज पहुंचाए, बे झिझक होकर हमें ज़रूर अपने मैसेजेस भेजें। एंड

0: Yes, sir. अभी तक आपके मैसेजेस को हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 5499-1294 टिल 9 PM हमारा और आपका साथ है. कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर हम बढ़ते हैं क्योंकि टाइम है, तो कुछ और गीत ही सही.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Masti.

वेल 8:55 मिनट हो चुके हैं और चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ छोड़े जा रही हैं आपको एक बार फिर से वापस आने के लिए. यस, कल हमारी और आपका आपकी मुलाकात होने वाली है सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

0: RM2 Radio Musti.
1: Late Night Grooves.
0: RM2 Radio Musti.
2: Very good evening, ladies and gentlemen. Swagat aap sabhi ka RM2 par Late Night Grooves. यानी कि बॉलीवुड के सुपर हिट गाने और साथ में एक कलेक्शन जिसको पसंद करेगा पूरा नेशन. दिन चाहे कैसा भी हो, बिजी रहा हो, लेकिन अब वक्त मिलेगा थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए. सो दिल को हल्का कीजिए, मुस्कुराइए और अपने गानों पर थोड़ा सा गुनगुनाइए. हर गाना एक याद को जरूर जगा देगा, एक स्माइल को जरूर बिठा देगा आपके चेहरे पर. सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं लेट नाइट ग्रूव्स आरएम2.

0: तेरी मस्ती सुनते रहो।
1: कभी कभी लगता है कि हम बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन याद रखिए स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हर छोटा कदम भी एक बड़े सपने की तरफ आपको ले जाता है। बस रुकना मत, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और मुस्कुराते रहिए।

स्माइल की कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन उसकी पावर हर दिल समझ लेता है। एक छोटी सी स्माइल किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। आज किसी को वजह दीजिए मुस्कुराने की, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा वापस जरूर आती है। सो अपने पार्टनर के साथ है, फैमिली के साथ है, मुस्कुराहट चारों ओर।

0: नास्ती।
1: जिंदगी में कोई भी अकेला सब कुछ अचीव नहीं कर सकता। हर सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का तो सपोर्ट होता ही है। आप चाहे अकेले काम कर रहे हो, लेकिन फैमिली का सपोर्ट, आपके पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली, दोस्त, कलीग्स या मेंटोर्स, उन लोगों की वैल्यू समझिए जो आपके साथ खड़े रहते हैं। एक सिंपल थैंक यू बहुत बड़ा गिफ्ट होता है।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: हम करियर के लिए ओवर टाइम करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना भाई बहुत जरूरी है। अच्छी नींद, हल्की सी वॉक और पॉजिटिव सोच, ये भी लाइफ के इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। खुद का ख्याल रखना यानी कि अपना ध्यान रखना कि आप सबका ध्यान रख पाए।

Bollywood. और वादा है कि म्यूजिक के साथ आपका यूं ही साथ निभाते रहेंगे। कभी कभी किसी की मदद करने के लिए पैसे नहीं, सिर्फ एक अच्छा दिल चाहिए होता है, एक अच्छी बात, एक सही सलाह या एक छोटा सा सपोर्ट किसी की जिंदगी बदल सकती है। बस पॉजिटिविटी लाइए और इस पॉजिटिविटी को किसी की जिंदगी में ले आइए।

कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उल्टा चल रहा है, अगेंस्ट चल रहा है, लेकिन याद रखिए रात जितनी भी लंबी हो सुबह जरूर आती है। हर चैलेंज आपको और मजबूत बनाता है। जो लोग हार मान लेते हैं वो कहानी वहीं ख़त्म कर देते हैं, और जो लोग लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, वही नई कहानी लिखते हैं। तो हौसला बनाए रखें और बॉलीवुड के इस खूबसूरत सफर को एंजॉय करते रहिए।

0: दोस्ती।
1: भाई दोस्ती की बात करें तो सच्चे दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशी में साथ हो, बल्कि वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। दोस्ती में बड़े गिफ्ट्स नहीं, बस सच्चाई, भरोसा और एक दूसरे के लिए वक्त होना चाहिए। आज अगर किसी दोस्त की याद आ रही है तो शो के बाद एक मैसेज तो भेज सकते हैं।

0: रेडियो मस्ती।
1: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं, जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: मां मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
2: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन कभी रुककर ये भी देखिए कि जिंदगी ने हमें कितना कुछ दिया है। एक परिवार, अपने लोग, सेहत, उम्मीद और नए दिन का मौका, इन सब के लिए दिल से शुक्रिया कहना भी जरूरी है। अब ग्रैटिट्यूड के साथ सुनते हैं एक और म्यूजिकल मास्टरपीस।

नहीं, ये रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ खून के रिश्ते में नहीं होती, कभी कभी दिल से बने रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बहुत सा रिस्पेक्ट, बस इतना ही काफी होता है रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। आज इसी अपने को बस इतना कह दीजिए, मैं हूं ना। और अब अगला सुपरहिट गाना आप सभी के लिए, जो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।

0: अच्छा लगा हाँ?
1: रहते हो
0: सच।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: सबने देखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। जो दिल सच में चाहता है उसके लिए मेहनत करना कम ही बंद मत कीजिए। हर दिन एक नया चांस लेकर आता है, बस अपनी कहानी को आगे बढ़ने दीजिए। खुद हीरो बनिए और म्यूजिक को बनाइए अपना परफेक्ट कंपेनियन।

0: दोस्ती।
1: चलिए साहब, देखते ही देखते आज की जो खूबसूरत म्यूजिकल प्लेलिस्ट है वही अपने अजान तक पहुंच गई है। मिडनाइट होने से पहले बस ये कहूँगा कि म्यूजिक थेरेपी आपके लिए 24/7 RM2 पर। बस रिश्तों को मजबूत बनाइए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। जल्दी मुलाकात होगी, ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब?